0: दीदी की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: और आज जन्माष्टमी वाले दिन क्योंकि हमने ठान लिए कि हम सिर्फ और सिर्फ सच बोलेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? हाँ, मतलब कुछ ही तो दिन होते हैं यार, मतलब भारतीय संस्कृति में एटलीस्ट उस दिन तो सच बोल ले यार अंतरा। व्हाई दैट एक्सक्लेमेशन मार्क?
2: सेटिंग द परफेक्ट हॉट टेम्परेचर फॉर।
3: मैं इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ये आज ऐसा खास क्या हो गया कि रेणुका को आज सच बोलने सारे, मतलब दैट इज वियर्ड।
1: जन्माष्टमी है भाई तो।
3: अच्छा।
1: हाँ, लेकिन जैसे कि हमें कृष्ण भगवान ने सिखाया है कि चाहे युद्ध का मैदान हो या जिंदगी, जिंदगी का कोई भी ऐसा कर्तव्य, हमेशा वही करो जो सच है। और कभी कभी सत्य को बचाने के लिए असत्य भी बोलना पड़े तो बोलो, ठीक है?
3: जी।
1: तो एनीवे, उस बारे में बात नहीं हो रही है राइट नाउ, तो सिर्फ इस बारे में बात हो रही है कि तुमने कभी नोट किया है कि जो एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स पे जो व्हीलचेयर वाले लोग होते हैं, है ना, उनको ऑब्वियसली हमेशा पहले जाने दिया जाता है।
3: करेक्ट।
1: प्लेन में। हाँ, तो अभी हाल ही में एक फोटोग्राफ बहुत मेजरली वायरल हुई जहां पर कम से कम 100 लोग एक एरोप्लेन में व्हीलचेयर में चढ़ने के लिए बैठे हैं।
3: 100 लोग?
1: हाँ, मतलब आप हर जगह देखें तो दिस मैसिव लाइन ऑफ ट्रैवलर्स जो मिडिल एज से लेके एल्डरली इंडिविजुअल्स तक, वो सारे के सारे एयरपोर्ट टर्मिनल पे बैठे हैं। अब वो एक प्लेन में जा रहे हैं या दो में जा रहे हैं ये नहीं समझ में आया, लेकिन हाँ, तो सवाल उठने लगा कि भाई साहब क्या है, क्या चल क्या रहा है ये? हाँ, ये US इंडिया फ्लाइट थी जो कि डजन्स ऑफ व्हीलचेयर रिक्वेस्ट आई। अब क्यों आई ये किसी ने पता लगाया तो भाई ये समझ में आया कि एक तो लैंग्वेज बैरियर है, नेविगेशन एंजाइटी है कि मैसिव इंटरनेशनल हब्स हैं, यू नो किस तरह से बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं, तो इसलिए व्हाट पीपल लाइक टू डू इज कि भाई हमें सर्विस भी मिल जाएगी, हम आराम से जाएंगे और कोई हमें हर गेट से निकालने के लिए भी मिल जाएगा।
3: करेक्ट,
1: तो इसलिए जरूरी नहीं है कि उन सबको वाकई व्हीलचेयर की जरूरत थी।
3: I've heard about this. A lot of people do this and specially जिनके parents वगैरह के लिए travel करते हैं, अक्सर ये जो है use किया जाता है. And there are people who get really angry on this as well. I have seen it on airports में कि भाई ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों चल रहा है, ये तो सही बात नहीं है।
1: तो अब सोल्यूशन ये कहा जा रहा है कि अगर व्हीलचेयर कोई कर रहा है तो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा ले लो पर एयरपोर्ट, उससे क्या है कि असलियत सामने आ जाएगी। But you think so?
3: हाँ, बनता है। और जिनको पे करना है तो वो तो पे करके चले आगे, मतलब यूज कर ही लेंगे, तो उनका भी तो कुछ फायदा ही होना चाहिए। Okay,
1: लेकिन जो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे फिर वो बेचारे कैसे जाएंगे, है ना, ये भी तो सोचो।
0: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन जैमिंग? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैक स्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैक स्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। Not your usual sit and watch show. Sing along, clap along, jam along. Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now.
1: It's a Masti Partner event.
2: इनका ने मुझे आज कहा कि मैं अपने हाथ की स्पेशल चाय बनाऊंगी आज, तो मैंने कहा कि इतना है तो फिर चलो आप और मैं चाय का स्टॉल फेस्टिव बाजार में लगा लेते, क्या कहते हो? सो व्हाइल शी कम्स बैक क्विकली, लेट मी टेक दिस टाइम एंड टेल यू सिंगापुर भाई से जितने भी बिजनेस ओनर्स, होम बेकर्स, फैशन लेबल, स्मॉल ब्रांड्स, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, अगर आप मुझे इस वक्त सुन रहे हो तो ये खबर आपके लिए है। सो फेस्टिव सीजन जो है वो ऑलरेडी चल रहा है एंड पीपल आर इन दैट काइंड ऑफ माइंड जोन कि भाई शॉपिंग करें, लेकिन कहां से, कहां है ये सारे शॉपर्स? माउंटबेटन CCIAEC जो है वो ला रहे हैं फेस्टिव बाजार 2026, अ फुल डे ऑफ शॉपिंग, फूड, एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिटी फन। ये हो रहा है 27th ऑफ सितंबर, संडे के दिन सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक माउंटबेटन CC मल्टीपर्पज हॉल में। एंड राइट नाउ स्टॉल बुकिंग जो है वो ओपन है, सो वेदर यू सेल अपैरल एंड फैशन, फूड या स्नैक्स, होम डेकोर, गिफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, लाइफ स्टाइल, फेस्टिव प्रोडक्ट्स, This is your chance to set up, showcase and sell. Standard tables जो है वो $80 है, premium tables $100 है excluding GST by the way. And while people shop there, वहाँ पे जो है live performances है, bouncy castle है बच्चों के लिए, joy rides, lucky draws, prizes and a lots more. So it's shaping up to be a proper family festive day out. Limited stall spaces है, so don't wait last minute के लिए, reserve करे अपना stall आज के आज ही. And for that you can give them a call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, 27th of September, Mountbatten CC.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: Su, su pe su.
2: बाथरूम में जाओ अंतरा. व्हाट इज द सुसू?
0: सेटिंग द परफेक्ट हॉट टेम्परेचर फॉर फ्राइडे.
2: मैं मैनेज कर लूंगी ना ये वाला शो जब तक तुम आओगी. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. अंतरा को जाना है सुसू और मैं यहाँ पर बिल्कुल आपकी सेवा में.
1: अय्या करूं मैं क्या. हो गया आओ. मतलब हाँ, ये जो है केस वाला सू है, ये वो वाला सू नहीं है रेणुका जो आप सोच रहे हैं.
2: ओके.
1: सो एक सू आया, दूसरे ने भी सू किया, तो दोनों ने सू सू कर दिया एक दूसरे पे.
2: ओके.
1: नाउ दिस सॉन्ग साउंड्स वेरी ऑफ.
2: या एज दे से डैड जोक. या ओके गो.
1: तो एक बंदा जो है उसका उसने अपने रोबोट वाला वैक्यूम नहीं होता वो जो गोल सा वो घूमता रहता है पूरे घर में थोड़ी थोड़ी देर में फिर वापस जाके अपने स्टेशन पे खड़ा हो जाता है वो वाला. तो उस रोबो वैक्यूम के जरिए उसने अपनी बीवी का अफेयर पकड़ा.
2: ठीक है. कैमरा लगा
1: था उसमें. कैमरा. हाँ कैमरा लगा हुआ था वो वाला. तो बीवी का अफेयर पकड़ा इसने. ठीक है. इसने किया उसको सू.
2: ओके.
1: फॉर $16,000.
2: ओके.
1: ठीक है. कहानी वहां पे खत्म नहीं हुई.
2: ओके.
1: बीवी ने कर दिया काउंटर सू.
2: ओ शाबाश.
1: सू टोटल सू ते सू. हाँ. फॉर स्पाइंग विदाउट कंसेंट.
2: ओ बेटे.
1: एंड शी वन एंड दिस गाय गॉट 5 months इन जेल आल्सो.
2: एंड बीवी गॉट फ्री टाइम विद द बॉयफ्रेंड. भाई साहब आज के जमाने में कुछ भी हो सकता है. आई लव इट.
1: भी हो सकता
2: है. हाँ भाई गलत बात है. तुम किसी की जिंदगी में ऐसे घुस नहीं सकते. इट इज टोटली नॉट ओके.
1: यू नीड टू नो किस सू पे सू करना है.
2: हाँ एग्जैक्टली. वो भी और लॉयर भी अच्छा होना चाहिए. डरपोक लॉयर नहीं चलेगा इस केस में. शाबाश. आई लव इट. करके दिखा तू. लगा तू कैमरा.

0: Ganesh Chaturthi bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa. Ganpati bappa!
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून. हमने उसे कहा इश्क सूफियाना. दो यादगार एडिशन के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया. 26 September, 7 p.m. onwards, CSE Auditorium, Tessensen Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now, 8138-2790. Ishq Sufiana, Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
2: It's a Masti Partner event.

0: so sexy.
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
2: भाई आज के जमाने में जैसा कि हम हमेशा कहते हैं अंतरा कुछ भी हो सकता है. गुड मॉर्निंग, दिस इज मस्ती मैडनेस विद रिनुका एंड अंतरा.
1: सेटिंग द परफेक्ट हॉट टेम्परेचर फॉर फ्राइडे.
3: मैं तो इस बात पे पूरा ही यकीन करती हूँ, और जब से मैंने मस्ती मैडनेस करना शुरू किया तब तो मुझे ऐसी ऐसी चीजों पे यकीन होने लगा है कि क्या ही बताऊं.
2: तो अब देखो, बैंगलोर में एक फिनटेक जो स्टार्टअप है स्टॉक ग्रो, उन्होंने एक नई लीव टाइप इंट्रोड्यूस करी है. ओके, एंड दैट इज कॉल्ड द ब्रेकअप लीव. अब इस पॉलिसी के अंतर्गत, जैसा कि आप समझ गए होंगे इसके नाम से, एम्प्लॉइज को 7 दिन तक की पेड टाइम ऑफ मिल सकता है टू हील आफ्टर अ रिलेशनशिप एंड्स. शायद इस कंपनी में बड़े रिलेशनशिप एंड होते होंगे, या एटलीस्ट जो ओनर है उसको ये समझ में आ गई होगी कि देखो जब ब्रेकअप के बाद लोग ऑफिस आते हैं, काम तो वैसे ही नहीं करते, दूसरों का टाइम अलग वेस्ट करते हैं. इससे अच्छा है कि इनको बोलो भैया देखो कितना, एक साल में कितने ब्रेकअप हो जाएंगे तुम्हारे, गुड कैलकुलेशन, तुम 7 दिन ले लो, 2 ब्रेकअप तक के लिए स्प्रेड आउट कर लो और जाओ यार. बट मैं ये सोच रही हूँ रिपोर्ट कैसे करते हैं, बिकॉज इट इज लाइक,
3: मेरा भी यही सवाल है ना, कि मतलब इसकी ऑथेंटिसिटी कैसे पता, मतलब कितना ऑथेंटिक है.
2: एग्जैक्टली. तो अब ऐसा है कि जो पॉलिसी है इट रन्स एंटायरली ऑन ट्रस्ट, मीनिंग एम्प्लॉइज डू नॉट नीड टू सबमिट चैट स्क्रीनशॉट्स या पर्सनल डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ ऑफ द ब्रेकअप. एम्प्लॉइज जिनको एडिशनल टाइम ऑफ चाहिए, भाई अब तेरे मेरे इमोशंस हो सकता है 8वें दिन तक चले, तो You can ask for extension subject to management approval. All right? And legal तो ये है कि it is not a statutory requirement under Indian labor law. तो इसलिए किसी भी time अगर आप misuse करेंगे तो company उसको वापस ले सकती है.
3: मैं कह रही हूँ कि जैसे ही कंपनी के HR ने ये मतलब इंट्रोड्यूस किया, मतलब कंपनी में से मैं 110% बता सकती हूँ कि 3-4 ऐसे शाणे एम्प्लॉइज वहां पे खड़े होंगे जिनका हर कुछ दिन में ब्रेकअप हो रहा होगा.
2: पर
3: और कुछ दिन में
2: बड़ा गलत है, मैरिड लोग लेंगे तो कितना, मतलब कैसे लेंगे ना. उनका भी तो आफ्टर ऑल इमोशन तो इमोशन ही है यार, दिल तो दिल ही
3: है. ऐसे तो कैटेगरीज का एंड नहीं है फिर.
2: ठीक है ना, क्या है, बट ये बड़ी अलग गलत बात है, मैरिड लोगों का भी तो दिल टूटता है.
3: Oh my God.

0: Keep feeling strong.
1: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
2: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
3: कुर्सी मिर्जापुर की हो तो फैसला वोट से नहीं, गोली से होता है। कालीन भैया की हुकूमत।
1: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
3: मुन्ना त्रिपाठी का भौकाल।
4: कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भोपाली के प्रिंस।
3: गुड्डू पंडित का बदला।
5: दिल वाले हैं, दिल फास्ट धड़कना चाहिए।
3: मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल एंड दिव्येंदु। रिलीजिंग 4th सितंबर आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क्स सिंगापुर।
6: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026, be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique, showcase your business to the community. Plus, live performances, kids activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.

0: भाई ब्रेकअप जो मैं अभी बता रही थी ब्रेकअप लीव के बारे में जस्ट अ वाइल बैक अंतरा जी. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी बाय द वे दिस इज मस्ती मैडनेस.
1: दे मेक फ्राइडे मॉर्निंग्स द फन.
0: तो मस्ती मैडनेस पर अभी जो हम बात कर रहे थे अबाउट ब्रेकअप लीव, मुझे लगता है कि अगर आप सुहानी शाह के शो पे जाएं, दिस मेंटलिस्ट, शी कैन इजीली लुक एट यू एंड आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस एंड देन इवन टेल यू आपका ब्रेकअप किसके साथ हुआ है, राइट?
2: अगर मतलब होने वाला है वो भी बता दे तो आई थिंक सभी पहुंच जाएंगे.
0: Exactly.
2: और भी ज्यादा इंटरेस्ट के साथ. नहीं
0: बिल्कुल. सो ये सुहानी शो का शो भाई 20 तारीख को है. आपने टिकट लिया है कि नहीं ली? $59 से टिकट शुरू है. अगर आप लें उस लिंक से जो कि हम आपको दे सकते हैं, सो जस्ट राइट टू अस एंड वी विल गिव यू द लिंक विच हैज द स्पेशल प्रोमो कोड जो सिर्फ और सिर्फ मस्ती फैमिली के लिए है. सो द टिकट इज $59 ओनली एंड आई टेल यू आप खुद जाएं देखें कि किस तरह से वो जादू कर सकती है आपके सामने और आप सोचते रह जाएंगे. एंड of course you might get a chance to be on stage as well with her, right? And breakup ke bare mein na se, she can tell you about your future. Why not? Kyun bhai?
2: It is crazy insane. I remember her, one of her videos where on live television,
0: yeah,
2: usne live presenter ka phone unlock kiya. Just asking few questions, uska phone ka number on, and it was like, what? How do you know? what? कुछ है ऐसा जो सुहानी नहीं पता कर सकती एज अ मेंटलिस्ट?
0: या एग्जैक्टली. इनफैक्ट शी विल आस्क क्वेश्चंस लाइक, तुम सोचो अबाउट द बर्थ डेट ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड. अब भाई मैं अगर अपने बचपन की बेस्ट फ्रेंड का बर्थ डेट सोच रही हूँ, ना तो सुहानी को पता है मेरी बचपन की फ्रेंड कौन है, ना वो मुझे जानती है, और ना उसका बर्थ डेट तो बहुत दूर की बात है. बट शी कैन लुक एट माई फेस एंड आस्क मी जस्ट अ फ्यू क्वेश्चंस विच हैव नथिंग टू डू विद द आंसर बाय द वे एंड actually tell the answer. Oh my god.
3: अपनी तो जैसे तैसे.
0: So अगर guts हैं और अगर मन है बिल्कुल और अच्छी जगह टाइम स्पेंड करना है, then 20th of September, go for Spellbound. And this is $59 only. Tickets on Systic. And this is Suhani Shah. है ना अंतरा जी?
2: You will be spellbound. That's for sure.
0: We promise you that.
4: Amir Khan wondered.
5: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
4: Salman Khan wanted answers.
6: Kaise kiya ye?
4: R. Madhavan said.
7: Awesome. You're very good, yeah. Very well done.
4: And Boman Irani?
8: I say this with great respect. This is actually, it's blown my mind.
4: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
9: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
4: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonder Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Systic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
10: How do you know these things? Stop reading my mind!

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: रेणुका, आपने ये मुखबांग वाले वीडियोस देखे कभी?
1: हैं, ये क्या है, पता तो लगाएं हम।
2: Setting the perfect hot temperature for Friday.
1: Good morning, मेरा यहाँ पर एग्जाम हो रहा है, शायद मैंने सही सुना। मुखपान, what?
0: मुखपान?
1: What is that? मुख में पान तो मैंने देखा है, ये मुखपान के वीडियो क्या है बताओ?
0: जो मुखबांग वीडियोस, वो वाले वीडियोस होते हैं जहाँ पर a person sits with a lot of food, yummy food, yummy looking food, और वो पूरे वीडियो में उसको उतना सारा खाना वो खुद ही खाता रहता है।
1: अच्छा,
0: लाइक बहुत सारा चाट, पानी पूरी और ये सारा कुछ रख लिया और वो खुद ही खाए जा रहा है, एंड ASMR के थ्रू, लाइक ऑल दोस क्रंच एंड एवरीथिंग, यू कैन हियर इट, हियर देम वेरी क्लियरली।
1: मुखबांग, अच्छा अच्छा, ओके, गो ऑन। साउथ कोरिया,
0: तो ये वाले समटाइम्स, अगर आपको किसी दिन भूख नहीं लग रही हो ना, तो आप ये वीडियो देख लो, डेफिनेटली लग जाएगी, स्पेशली पानी पूरी वाले मुखबांग। ओ माय गॉड, ऐसा मुंह में टेस्ट आता है ना, अभी पानी पूरी बस दे ही दो। बट मैं इसलिए बोल रही थी, सो वैरायटी ऑफ कॉन्टेस्ट वगैरह ऐसे चलते हैं कि बहुत सारा खाना खाना है। ऐसा ही एक कॉन्टेस्ट चल रहा था जहां पे घोस्ट पेपर, घोस्ट, भूत झुलकिया, वो खाना था। सो दिस 47 ईयर ओल्ड मैन, ही टुक पार्ट इन दिस फूड चैलेंज। तो भाई घोस्ट पेपर प्यूरी डाला हुआ था बर्गर के टॉपिंग पे, एंड जस्ट राइट आफ्टर ईटिंग इट, एक तो इंटेंस माउथ बर्निंग तो शुरू हुआ ही हुआ, तो उसने 6 लार्ज ग्लासेस ऑफ वाटर पिए फटाफट गटगट करके, बट उसके बाद इसने की वॉमिटिंग। अब क्या था, देखो लोग सोच रहे होंगे कि क्योंकि बिकॉज इट इज ऑब्वियसली इट्स सो स्पाइसी दैट बॉडी का ऐसा रिएक्शन है, डॉक्टर्स जो है उन्होंने पाया 2.5 सेंटीमीटर का होल ईसोफेगस में उसके।
1: ओह वाओ,
0: एंड Yeah, and this injury was linked to the force of vomiting. पेपर से नहीं आया, उसके वॉमिटिंग का फोर्स इतना ज्यादा था कि उसके ईसोफेगस में होल हो गया 2.5 सेंटीमीटर का।
1: ओह माय गॉड, ओह माय गॉड,
0: ही नीडेड इमरजेंसी ट्रीटमेंट, 23 डेज हॉस्पिटल में गुजारे, ही लेफ्ट विद अ स्टमक फीडिंग ट्यूब।
1: भाई साहब, वीडियोस को देख के बिल्कुल भी फॉलो ना करें, ऐसे कॉन्टेस्ट में हिस्सा ना लें, ऐसे काम ना करें। बट ये जो करने वाले थे, हाँ, इनको किसी ने नहीं पकड़ा कि तुम ह्यूमंस पे जो इम्पैक्ट हो सकता है वो तुम्हें अकल नहीं थी, किस तरह की चीजें तुम कॉन्टेस्ट में कर रहे हो। हाँ,
0: पता, ये लोग ना सारे पहले ये सब साइन वाइन करा लेते कि अगर कुछ हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, एंड ऑल दोस थिंग्स, दे आर, आई एम श्योर दे आर वेरी मच अवेयर, एंड दे मेक श्योर दैट उनके ऊपर बात ना आए।
1: एब्सोल्युटली, वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। ऐसी जगहों पे कभी भी साइन मत करो, अपने सिग्नेचर्स की वैल्यू समझो, इंसान वैल्यू समझो, ठीक है ना आंसर?
0: या, बट द मुखबांग वीडियोस आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। एक में तो बिरयानी और चिकन, क्या खाया उस लड़की ने?
1: ओके, नाउ वी नो, नाउ वी नो व्हाट आंसर इज डूइंग।
3: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही खयाल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: राधा की भक्ति मुरली की मिठास, माखन का स्वाद और गोपियों का रास, इन्हीं सबसे मिलके बनता है जन्माष्टमी का ये दिन खास। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: टाइप के फ्रूट खा लिए सुबह सुबह, मुझे लग रहा है फ्रूट खाने के बाद और भूख लगती है ना इंसान को। नहीं
1: ये कुछ खा लेती है तभी तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आई थिंक जन्माष्टमी का ये सबसे अच्छा पार्ट है, रेणुका एट समथिंग।
0: हाँ
1: फाइनली
0: इसी धोखे में दुनिया रह रही है और मेरी सिर्फ मैं और मेरी वेइंग मशीन के बीच का रिश्ता हम जानते हैं हम। Alright, on Radio Masti 24/7, guys. मैं बताना चाहती हूँ अंतरा जी आपको कि मसाज कराने का मन तो सबका करता है, आपका भी करता होगा
1: जी,
0: है ना? बिल्कुल, मेरी आज मेरी शरीर टूट रहा होता है। मैं ना कई बार जब बैंकॉक जाती हूँ ना घूमने फिरने और बस पहुंचने ही वाली होती हूँ, रास्ते से ही थकावट शुरू हो जाती है कि लेकिन इस न्यूज को सुनने के बाद आप अपनी चादर लेके जाएंगे अपने साथ और शायद आप जाएंगे भी नहीं। सो एक होम बेस्ड मसू है हु इज कॉल्ड रूडी। अब क्या है कि शी कॉल्ड अपने किसी को, मतलब मसाज के लिए जैसे भी होता है लोग आते हैं उसके पास में, और फिर उसने देखा कि उसका जो मसाज बेड है ना उस पे 25 साल का जो क्लाइंट अभी भी मसाज करा के गया है वो पॉटी करके गया है। पॉटी करके? हाँ, मतलब ये नहीं समझ आता कि एक इंसान को प्रॉब्लम क्या है। तो उसने तीसरी बार, इससे पहले कि वो करता, बिकॉज वो आता था उसके पास और ये हर बार मतलब बिल्कुल भी बात नहीं करती थी उस बारे में कि भाई क्लाइंट को कैसे जाने दें, तो 5 सेकंड इसने इंतजार किया मसाज के बाद और फिर देखा कि वो बंदा सीरियसली वहां पर बैठ के पॉटी कर रहा था।
1: है?
0: हाँ, तो उसने से पूछा क्या बात है, तो कहता है मेरा ना फेटिश है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मसाज करते ही मेरा मन करता है कि जहां मैंने मसाज कराई है उसी बेड पर मैं पॉटी करूं, नहीं तो मेरा दिन पूरा नहीं होता। मतलब क्या है ये, तो जाएगी तेरे को बताऊं?
1: ये एक तो ये फेटिश वालों से, मतलब अपना फेटिश अपने पास रखो ना, हमें कोई जजमेंट नहीं है, बट ठीक है यार अपने पास तक रखो, ये क्या मतलब होता है? एक बेचारे हम मसाज भी ना कराने जाए, अब मतलब क्या चाहते क्या हो हमसे?
0: इनफैक्ट वो कई बार जिपलॉक कंटेनर लेकर आता था, अगर उसको खुद नहीं आती तो वो कहीं से कहता था, कई बार मैं पब्लिक टॉयलेट से भी ले आता हूँ बिकॉज मुझे छोड़ के जाना जरूरी है।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन जैमिंग? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैकस्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। Not your usual sit and watch show. Sing along, clap along, jam along. Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now.
1: It's a Masti Partner event.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: भाई कंप्लेंट्स अलग अलग तरीके की होती है और कोई अगर ऐसी कंप्लेन लेके आए तो इंसान कहाँ जाए.
3: मैं देखिए कंप्लेंट आई है तो सुननी तो पड़ेगी. इंसान को जाने की जरूरत नहीं है, रुक के उसको सॉल्व करने की जरूरत है. कहाँ भाग रही हो तुम मंत्रा जी.
2: मैं चाहती हूँ रेणुका इस कंप्लेन को बिल्कुल अटेंड करे और बताए इसका सोल्यूशन की क्या करना चाहिए. आई रियली वॉन्ट टू नो दैट वॉट सोल्यूशन आई थिंक रेणुका विल गिव एंड वॉट एक्चुअली शी विल गिव, डज इट मैच और नॉट. सो कंप्लेन में कुछ ऐसा हुआ, ये बंदी क्रूज पे थी, ठीक है. अब सिचुएशन कुछ ऐसी एस्केलेट हुई कि ये 5 बार गेस्ट सर्विस के उधर रिसेप्शन पे पहुंच गई, ठीक है, 5 separate times रिक्वेस्टिंग दैट समवन टर्न द ओशन डाउन
3: है.
2: हाँ, तो थोड़ा एस्केलेट हुआ व्हेन शी डिमांडेड कि भाई शिप के कैप्टन से मेरी बात कराओ. और उससे बोला कि भाई ये जो है ना 54 year old है, ठीक है, ये एंड वो फुल रिफंड भी मांग रही है कैरिबियन क्रूज से क्योंकि ओशन जो है उसको रात की नींद नहीं कंप्लीट करने दे रहा था. एंड भाई वो कंप्लेन कर रही है देयर आर कांस्टेंट वाटर नॉइजेस आउटसाइड हर बालकनी केबिन. क्रू मेंबर्स को पहले लगा कि मे बी इट्स सम मैकेनिकल इशू और समथिंग, बट दैट वाज नॉट द थिंग. सो वेल शी सेड दैट द इट इज द साउंड ऑफ वेव्स हिटिंग द शिप थ्रू आउट द नाइट. इट वाज अनरीजनेबल, इट वाज एक्सेसिव, इट वाज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द ब्रोशर. एंड ऑफ कोर्स अब वो बार बार यही कह रही है कि ये जो ओशन है इट इज टू लाउड एट नाइट, उसका साउंड आपको नीचे करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे को फुल रिफंड चाहिए अपने पैसे का. ये ऐसे थोड़ी ना है, यू कांट कॉम्प्रोमाइज. तो अब आपका सॉल्यूशन फॉर दिस बंदी का कंप्लेन.
3: मैं आपको अगला गाना जो सुनाने वाली हूँ, आप सोचो अगर ये इस पे जाती तो क्या करती. मतलब भारतीय रेलवे पे ट्रेवल करो तुम तब बता तुम किसको सू करोगे. बट सीरियसली जब तुम क्रूज में जा रहे हो और तुम्हें पानी के आवाज से प्रॉब्लम है तो हाँ, तो आई थिंक क्रूज वाले ये कर सकते थे कि उसको ये बोलते आप पानी के अंदर जाएं और उनसे बात करके आए कि भाई आज रात थोड़ा धीरे करना, और उसके साथ ही उनको उसमें फेंक देना चाहिए था उसको. आपकी जब बात हो जाए तो बता दीजिए, जस्ट नॉक एट आवर डोर, वील पुल यू बैक. ओके
2: जी, एंड दिस कंप्लीटली मैचेस व्हाट आई थॉट शी विल गिव एज अ रिप्लाई.
3: आई एम सो ग्लैड.

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा.
2: नहीं खुला तो तोड़ देंगे.
3: कुर्सी मिर्जापुर की हो तो फैसला वोट से नहीं, गोली से होता है. कालीन भैया की हुकूमत.
1: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं.
3: मुन्ना त्रिपाठी का भौकाल.
4: कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भोपाली के प्रिंस.
3: गुड्डू पंडित का बदला.
5: दिल वाले हैं हम, दिल फास्ट धड़कना चाहिए.
3: मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल एंड दिव्येंदु. रिलीजिंग 4th September, Island Wide at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.

0: गणपति बप्पा मोरया। इस बार अंतरा तुम मानोगे नहीं, मैंने सोच लिया है, मैं ऑलरेडी जाके एक्चुअली सोच क्या लिया है, मैं तो ऑलरेडी जाके ले आई हूँ फ्रॉम ज्योति का जो कफ रोड पर है ना शोरूम ऑफ गणपतीज, मैं ऑलरेडी वहां से जाके अपने गणपति बप्पा मोरया ला चुकी हूँ। आई एम सो सो सो एक्साइटेड नाउ बिकॉज इस बार पहली बार आफ्टर मेनी ईयर्स मैं टाइम से बिल्कुल आई हैव गॉट माय फेवरेट पीस। And इस बार because मैं इधर उधर बहुत होने वाली हूँ, 6 inches का लेकर आई हूँ यार, can you believe it? It's so so so beautiful, you cannot imagine. तुझे तो मैंने दिखाया था वैसे।
1: मैं मेरा सवाल ये है कि आप इतना मतलब अपने डिसीजन कैसे ले लिया वहां जाके, मैं तो वही नहीं मतलब वेर आई वॉज देयर इन दैट वेयर हाउस जहाँ पे 21 कफ रोड पे है, ओह माय गॉड, मतलब मेरे को लग रहा था कि अब इसमें से चूज कैसे करेंगे।
0: वेरी ट्रू,
1: कैसे कैसे हाउ टू डू इट, इट्स एवरी सिंगल पीस वाज सो अमेजिंग, चाहे उसकी डिटेलिंग दे, किसी का मुझे ज्वेलरी इतनी पसंद आ रही है, किसी का द वे ही सिटिंग इट्स सो क्यूट एंड नाइस, किसी में कलर्स मुझे ज्यादा पसंद आ रहे, किसी के कपड़े मुझे ज्यादा पसंद आ रहे, मैं कहा मैं नहीं, ये तो ये चीटिंग हो गई है मेरे साथ।
0: तो मैंने किया ना चीटिंग, मैंने अंतरा को वहां पर वीडियो कॉल किया जब मैं लेने गई थी, और उसके बाद मैंने इसको बोला अंतरा कौन से सबसे अच्छे लग रहे हैं तू बता, बिकॉज आई रियली कुड नॉट डिसाइड। आई टेल यू, यू गाइज हैव टू गो टू 21 कफ रोड, ज्योति का जो शोरूम है जस्ट नेक्स्ट टू द कैम्बेल लेन, जो उनका मेन ज्योति स्टोर है उसके बिल्कुल पास में ही है, लेकिन रियली I would say it's there are amazing. hundreds of beautiful pieces in all shapes and sizes and colors, and वो जिस तरीके से बैठे हुए हैं ना, मन करता है सबको घर ले आओ, seriously.
1: True.
0: सो गाइज गणेश चतुर्थी, जी हाँ बिल्कुल, उसके लिए आप जा ही सकते हैं इको फ्रेंडली अपने आइडल्स लेने के लिए, बट इफ यू फील कि आपके घर में एक गणपति जी की जगह है तो इससे बेहतर शायद ही कोई जगह होगी, जस्ट गो एंड गेट वन ब्यूटिफुल आइडल फॉर योर होम एंड जस्ट
1: एंड एज आई से दैट वंस यू गो देयर, देयर इज ऑलवेज दिस वन बप्पा हु इज कॉलिंग यू,
0: यस,
1: you know it, there's always this one piece which calls you,
0: and
1: it's a divine blessing if that something like that you feel or it happens over there, so you have to go to 21 Cuff Road to experience that, and if you get a bappa from there and aap uska receipt sambhal ke rakh lete ho hame bhej dete ho, then you stand a chance to win a pearl, so bappa aur pearl necklace sath sath aapke ghar aa sakte
0: hain, bilkul, aur ye sach ka pearl necklace hai, hum aise nahi bol rahe hain, so just go get it, send us the receipt and win your pearl necklace, theek hai, it's as simple as that. Good morning.
2: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa.

0: भाई ऐसा है कि बाथरूम में फंसना तो ठीक है, पर अगर किसी लग्जरी स्टोर के बाथरूम में आप रहें और 80 मिनट तक रहें तो भी आप क्या उतने ही जोर से कंप्लेन करेंगे या नहीं? गुड मॉर्निंग,
1: सेटिंग द परफेक्ट हॉट टेंपरेचर फॉर फ्राइडे।
2: माखन चोर के दिन में न्यूज चोर कौन है
0: भाई? जरना गर्ग की न्यूज है तो मुझे ही बतानी पड़ेगी। इंडियन अमेरिकन कॉमेडियन है ऑफ कोर्स, अगर आपने उनका हाल ही में एक मीडिया कॉप में बहुत बड़ा सा वो भी हुआ था उनका इवनिंग, सो अगर आप गए थे उनके शो के लिए तो वेरी गुड, अगर नहीं गए थे तो हम बता देते हैं। शी इज ऑल ओवर इंस्टाग्राम एंड एवरीवेयर। सो अर्मेस के जो लग्जरी स्टोर है बर्लिन में, 80 मिनट तक स्लाइडिंग डोर हो गया था जैम एंड शी वॉज लॉक्ड इन साइड दैट बाथरूम एंड नो वन केयर्ड, दैट इज द बिगेस्ट न्यूज, राइट?
2: कैसे उसको बाहर निकाला गया एंड ऑल दोज थिंग्स एंड देन शी लेफ्ट नो स्टोन्स अनटर्न्ड, क्योंकि उसने फिर अलग अलग वीडियोज में बार बार आके फिर बताया कि ऐसा नहीं कर सकते थे, वैसा नहीं कर सकते थे, इतना क्या फायदा, यू नो इतना ब्रांड होने का क्या फायदा जब तुम इतनी सी बात का, यू नो यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ योर कस्टमर्स लाइक दिस, हाउ कैन यू डू भाई? पता किस, अरे हाउ, मतलब इतना बड़ा ब्रांड और ये ऐसा?
0: भाई ब्रांड अपनी जगह है, बाथरूम अपनी जगह है, ये क्या बात है?
2: अब भाई पर पता तो चलना चाहिए कि तेरे तुम्हारे बाथरूम में कोई फंसा हुआ है, मतलब 80 मिनट इज अ लॉट ऑफ टाइम बाय द वे।
0: That is true. और एंड में एक शैम्पेन की बोतल दे दी और बोला सॉरी मैम, उसने कहा रख लो अपने पास तुम अपनी शैम्पेन की बोतल। बट सी इन द प्रोसेस शी गॉट कंटेंट फॉर हर नेक्स्ट शो, है कि नहीं? हर चीज का एक पॉजिटिव साइड होता है लाइफ में, है ना?
2: That is true.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 September, 7 p.m. onwards, CSE Auditorium, Tissenson Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now, 81382790. Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
2: It's a must-be partnered event.

अच्छा भाई, तो अब तो हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि आज है जन्माष्टमी। और बाय द वे, इससे पहले कि आप लोग हमें मैसेजेस लिखें और बोलें कि जन्माष्टमी दो दिन लेट हो रही है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ऑनकोर शो सुन रहे हैं हमारा। ये शो फ्राइडे का है जो लाइव है, और इसके बाद जब भी आप इसे सुन रहे हैं तो वो रिपीट है।

0: जब भी, मतलब कि सैटरडे शाम को, है ना भाई अंतरा?
1: हमारे लिसनर्स ना बहुत स्मार्ट हो गए हैं. कभी कभी वो ऐसा लिखते हैं ना कि ये लिटरली समटाइम्स दे राइट टू अस ओवर हियर कि अंतरा ये वाला गाना ना घंटे के एंड में मत चलाना, क्योंकि फिर वो कट जाएगा, नेक्स्ट आवर शुरू हो जाएगा.
0: अच्छी बात है ना. अब ऐसा है कि इनको समझ आ गया है हाउ एवरीथिंग वर्क्स हियर, राइट, इन द सिस्टम. सो आके हमारी कुछ हेल्प करा दे जिंदगी में. घर बैठे हुए सिर्फ मजे ही ले रहे हैं इतने सालों से, माइट एज वेल डू समथिंग. बाय द वे, इन पे प्रेशर डालो कि ये 1 अक्टूबर को हमारी 10th एनिवर्सरी कैसे मना रहे हैं. क्यों भाई, है कि नहीं?
1: बिल्कुल
0: है ना. क्या करना चाहिए इनको अंतरा, तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए. निकलवाओ इनसे कुछ.
1: इनको कुछ सोच के हमें बताना चाहिए. हम बात तो वही है ना, हम यही इन्हीं से तो यही पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हो?
0: बिल्कुल
1: बताओ. इतने सालों से एंटरटेनमेंट ले रहे हो, बट क्या कर रहे हो?
0: जी, और तेरे से तो 10 साल से ले रहे हैं, मेरे से 17 सालों से ले रहे हैं. On Radio Masti, guys, इस आवाज को तुम मतलब तब तक सुनोगे अपने कानों में जब तक कि तुम सोचोगे यार ये आवाज जा क्यों नहीं रही हमारे ज़हन से. Seriously speaking, guys, you should recognize me from wherever I am. मैं सड़क पे चल रही हूँ और अंतरा भी, by the way, जितना अब तक हमने इतना टाइम बताया है कि नूपुर को इतने साल हो गए, 9 साल नूपुर को हो गए, समर जी को ऑलमोस्ट 10 साल हो रहे हैं हमारे साथ, मुग्धा ऑफ कोर्स बीच में नहीं थी बट शी इज बैक, तो उसको भी 6-7 साल ऑन एयर हो चुके हैं. हम लोग हैं, सोचो कि कितना कुछ यहाँ पर हैज हैपन, राइट. सो कितने इमोशनल हैं हम, क्या करोगे तुम हमारे लिए बताओ हमें. 9151896 3, बस वक्त आ गया है कि तुम हमारा जितना एहसान है वो चुकाओ, है ना भाई.
1: मुझे लगा रेणुका फुल फिल्म ही जा रही है, दूध का कर्ज निभाने का टाइम.
0: Actually, I was about to. There is too much. Alright, guys. Have a fantastic weekend. And of course, we'll be right here. बता देना सबको, Masti Media 24/7. That's the name of our app. And जैसे ही उसको डाउनलोड करोगे, by the way, नए नए फीचर्स, उसके बारे में भी जरा बात करेंगे. Bye for now. Bye, Anthro.
1: Bye-bye. Happy weekend.

0: नचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: आएंगे
1: न करण अर्जुन आएंगे न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे
2: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन जैमिंग? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैक स्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैक स्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, इंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। Not your usual sit and watch show. Sing along, clap along, jam along. Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now.
1: It's a musty partner event.
2: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. Dusra koi nahi khulega.
3: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
0: कुर्सी मिर्जापुर की हो तो फैसला वोट से नहीं, गोली से होता है। कालीन भैया की हुकूमत।
2: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
0: मुन्ना त्रिपाठी का भौकाल।
4: कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भोपाली के प्रिंस।
0: गुड्डू पंडित का बदला।
5: दिल वाले हैं, दिल फास्ट धड़कना चाहिए।
0: मिर्जापुर द मूवी starring Pankaj Tripathi, Ali Fazal and Divyendu. Releasing 4th September, island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: क्रिशिवल नट्स, ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20।
4: अरे अरे, अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
5: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
6: टाइम टू रेज द बार,
7: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
8: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
9: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म हेलो सिंगापुर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं समर और आप सुन रहे हैं सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009 रेडियो मस्ती। और रेडियो मस्ती पर शुरू हो चुका है लेजेंड्स फिर से। तो आज मैं किसकी बात करने वाला हूँ, चलिए मैं बता दूं आपको। देखिए, ये वो हैं जो कॉमेडी के बादशाह डायरेक्टर नंबर वन है। हिंदी फिल्मों के ये पहले डायरेक्टर हैं जिन्हें डायरेक्टर नंबर वन कहा गया, क्योंकि इन्होंने ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई हैं जिसमें नंबर वन कहीं ना कहीं आता है, जैसे कि कुली नंबर वन, बेबी नंबर वन, हीरो नंबर वन और भी हैं। यानी हिंदी फिल्मों में अगर कॉमेडी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर्स की एक लिस्ट बनाई जाए तो सबसे पहले जो नाम आता है वो है डेविड धवन। अब देखिए, हिंदी फिल्मों में अगर एक्शन में मनमोहन देसाई का नाम लिया जाता है और रोमांस में यश चोपड़ा का, तो कॉमेडी में एक नाम जरूर लिया जाता है, वो है डेविड धवन का।
1: लगता है किसी पागल कुत्ते को काट के आए ला। अच्छा। या तो इसका दामाद इसकी बेटी को छोड़कर चले गए ला है, या तो कहीं जाके वो मर गए ला है, इसीलिए ये बेचारा पागल हो गया।
2: नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, ये मेरा दामाद है।
1: तुम्हारा दामाद क्या है इलाहाबाद के तालाब में?
3: अरे नंदू, सुना कल तूने मुखिया के कुत्ते को काट लिया था?
4: पहले कुत्ते ने मेरे को काटा था, इसलिए मैंने उसे काट लिया। झगड़े के अंदर मैं हिसाब बराबर रखता हूँ।
0: इनकी फिल्मों की न सिर्फ कॉमेडी बेहतर होती है बल्कि म्यूजिक भी उतना ही कमाल।

तो जनाब लगभग 60 फिल्में एडिट करने के बाद, 60 फिल्म्स एडिट करने के बाद डायरेक्शन में कदम रखने वाले डेविड ने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई हैं और जिन फिल्मों में कई एक्टर्स को इन्होंने सुपरस्टार का दर्जा भी दिलवा दिया। तो आज हम उन्हीं कॉमेडी की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की बातें करेंगे और गाने भी सुनेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप एंजॉयिंग रेडियो मस्ती।

0: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa. Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir bhajan jamming? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैकस्टेज सिब्लिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। Not your usual sit and watch show. Sing along, clap along, jam along. Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now.
1: It's a musty partner event.
2: Sunte rahiye Legends phir se Samar ke saath.
3: डायरेक्टर प्रोड्यूसर डेविड धवन स्पेशल शो आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर, और मैं हूं समर आपके साथ लेजेंड्स फिर से में। देखिए, जो आज के हमारे लेजेंड हैं डेविड धवन, ये पैदा हुए अगरतला में, त्रिपुरा में, अगरतला में। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, अगरतला में पैदा हुए 16 अगस्त 1955 को, और इनका पालन पोषण जो हुआ वो सब कुछ कानपुर में हुआ। डेविड बेसिकली एक पंजाबी हिंदू फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेकिन इन्होंने अपने बचपन के कुछ साल कैलकटा में भी बिताए। उनके चाचा के कोई बच्चा नहीं था तो ये उनके पास रहते थे। अपने बचपन को डेविड कुछ यूं याद करते हैं।
4: I had great memories of that place. I was very small. I remember watching Jerry Lewis films, nice, you know, Chinese food. And my school also, मुझे एक चीज याद है, एक दिन मैं स्कूल से, एक दिन क्या हुआ, मैं निकल गया। I was very small. तो मैं वेट ही नहीं किया, मैं चलना शुरू हो गया, स्ट्रीट में चला गया। एंड देन मेरे एक अंकल का होटल था, मैं उधर पहुंच गया। देन बाय द टाइम द कॉप्स केम एंड दे फाउंड मी, मुझे बिठा के घर छोड़। आई रिमेम्बर दैट आल्सो।
3: डेविड धवन के पिताजी यूको बैंक में मैनेजर थे, और बचपन से ही डेविड को एक्टर बनने का शौक था। एक्चुअली इनका नाम डेविड धवन नहीं था शुरू में, इनका नाम था राजेंद्र धवन, लेकिन इनके पड़ोसी जो ज्यादातर क्रिश्चियन थे वो इन्हें प्यार से डेविड बुलाते थे, तो फिर इन्हें डेविड ही कहा जाने लगा। और जब इन्होंने एक्टिंग का कोर्स करने के लिए फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो अपना ऑफिशियली नाम भी डेविड धवन ही लिखवा लिया। वैसे फिल्म इंस्टीट्यूट इन्होंने ज्वाइन किया था एक्टिंग के लिए, लेकिन जब इन्होंने देखा कि वहां तो भैया सतीश शाह हैं, सुरेश ओबेरॉय जैसे दमदार एक्टर हैं, यहां तो अपनी दाल गलने वाली है नहीं, तो इन्होंने बाद में स्ट्रीम चेंज करवा ली और फिर एडिटिंग में एडमिशन करवा लिया। यहाँ इन्होंने एक बंगाली फिल्म देखी थी, मेगा ढाका तारा। ये देखने के बाद इनको लगा कि ये भी फिल्में बनाएंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल ये एडिटिंग सीख रहे थे। 1976 में एडिटिंग में डिप्लोमा करने के बाद दूरदर्शन पर ये काफी सारे सीरियल्स एडिट करने लग गए। इसके बाद ये फिल्मों में एडिटर बन गए। करीब 60 फिल्में इन्होंने एडिट की। सबसे पहले इन्होंने साजन बिन सुहागन एडिट की थी, जो सावन कुमार जी ने बनाई थी। इसके बाद इन्होंने महेश भट्ट की फिल्म संजय दत्त, जिसमें स्टार थे संजय दत्त और कुमार गौरव, नाम एडिट की। जब डेविड संजय दत्त की एक और फिल्म एडिट कर रहे थे तो संजय दत्त ने इनसे कहा कि यार डेविड तो इतनी अच्छी फिल्म एडिट करता है, तो फिल्म डायरेक्ट क्यों नहीं करता। अब साहब डेविड धवन के मन में तो था कि एक डायरेक्टर बनना है, इधर संजय दत्त ने भी उन्हें कह दिया, तो उन्होंने अपनी पहली फिल्म की तैयारी शुरू कर दी। कौन सी थी ये फिल्म सिंगापुर, इसके बारे में हम बताएंगे, और फिर क्या हुआ इस फिल्म का वो सब भी आप जानेंगे, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। कीप लिसनिंग एंड कीप एंजॉयिंग रेडियो मसी 24/7 लाइव, सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009।

0: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
1: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
2: कुर्सी मिर्जापुर की हो तो फैसला वोट से नहीं, गोली से होता है। कालीन भैया की हुकूमत।
0: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
2: मुन्ना त्रिपाठी का भौकाल।
3: कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भौकाली के प्रिंस।
2: गुड्डू पंडित का बदला।
4: दिल वाले हैं, दिल फास्ट धड़कना चाहिए।
2: मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल एंड दिव्येंदु। रिलीजिंग 4th सितंबर आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर। Aamir Khan wondered.
5: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
2: Salman Khan wanted answers.
6: कैसे किया ये?
2: R. Madhavan said.
7: Awesome. You're very good, yeah. Very well done.
2: And Boman Irani?
8: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
2: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
9: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
2: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! One Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
10: How do you know these things? Stop reading my mind!

0: सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: और जी आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो मस्ती पर, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से और मैं आज डायरेक्टर नंबर वन की बात कर रहा हूँ, डेविड धवन की। संजय दत्त के इंसिस्ट करने पर डेविड ने अपनी पहली फिल्म बनाई जिसका नाम था हनी गैसेस? नाम था ताकतवर। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसमें संजय दत्त खुद थे और गोविंदा थे उनके साथ लीड रोल में।
2: तेरी कलाई का नाप ले रहा हूँ खुराना, ऐसी हथकड़ी बनाऊंगा जिससे ना हवा गुजर सकेगी ना ही तेरे रगों से खून।
1: डेविड धवन की ये पहली फिल्म थी और पहली ही फिल्म हिट रही। चाहे फिल्म के डायलॉग्स हों या फिर गाने, हर चीज लाजवाब थी।

वैसे डेविड धवन को कॉमेडी किंग माना जाता है, लेकिन इन्होंने शुरू में एक्शन फिल्में ही बनाई थी, जैसे ताकतवर के बाद उन्होंने बनाई आग का गोला, गोला बारूद। लेकिन फिर 1990 में एक फैमिली ड्रामा इन्होंने बनाया और वो सुपर डुपर हिट हो गया। फिल्म का नाम था स्वर्ग। इसमें राजेश खन्ना और गोविंदा लीड रोल में थे और भाई साहब कमाल का इमोशन इन्होंने दिखाया एक सर्वेंट और एक मास्टर के बीच। मालिक होते हैं राजेश खन्ना और फिर उनका वक्त बदलता है और उनके हालात बहुत खराब हो जाते हैं और ये जो सर्वेंट होता है गोविंदा ये बहुत बड़ा स्टार बन जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया फिल्म थी और इस फिल्म के सुपरहिट होने के बाद डेविड धवन एक अच्छे एडिटर तो थे ही, अब उनकी गिनती अच्छे डायरेक्टर्स में भी होने लगी। अब देखिए सेलिब्रेशन का टाइम है तो सेलिब्रेशन बगैर म्यूजिक के हो सकता है क्या? तो आइए ये गाने सुन लेते हैं, एंजॉय कीजिए इनको। मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगा इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 PM onwards, CSC Auditorium, Tessensohn Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now 8138-2790. Ishq Sufiana, Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
1: It's a Masti Partner event.
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
3: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
3: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
4: जीजी
3: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
4: GGMart, your personal grocer.
0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 AM to 6 PM, Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.

अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया।

कचरा बाबा, यहाँ खिलौनी वावा, यहाँ का डांडिया बाबा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्ता हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: लीजिए एक बार फिर से हाजिर है समर लेकर लेजेंड्स फिर से। ब्रेक के बाद मैं आपसे मुखातिब हूँ लेजेंड्स फिर से में डेविड धवन की कहानी को लेकर। ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था स्वर्ग फिल्म बनाने के बाद कैसे डेविड अब एक अच्छे खासे जाने पहचाने डायरेक्टर्स की लिस्ट में शुमार हो चुके थे। उनका नाम इंडस्ट्री में अब अदब से लिया जाने लगा था। एक और फिल्म उन्होंने बनाई जो सुपरहिट हो गई स्वर्ग के बाद, वो थी शोला और शबनम। इसमें गोविंदा तो थे ही, साथ में थी दिव्या भारती।
2: तुमने मेरे कायदे प्लस कानून की लिस्ट क्यों नहीं पढ़ी?
3: पढ़ी थी सर।
2: झूठ बोलते हो तुम। पढ़ी होती तो तुम्हें 13 नंबर कानून अच्छी तरह याद होता। क्या है चट बार क्यों तुम्हारा बार क्यों हिले क्यों तुम अटेंशन में हिले क्यों तुम।
1: इस फिल्म का नाम पहले खिलाड़ी रखा जाने वाला था, लेकिन खिलाड़ी नाम का राइट वीनस के पास था, इसलिए फिर प्रोड्यूसर पहलाज निलहानी को इसका नाम शोला और शबनम रखना पड़ा। फिल्म में गाना लीड एक्टर गोविंदा ने खुद गाया है, ये वाला।

शोला और शबनम 92 में आई थी, जो सुपरहिट रही और इसी साल डेविड धवन ने एक और हिट फिल्म दी, बोल राधा बोल। और ये फिल्म साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर थी, दीवाना और बेटा के बाद। ऋषि कपूर के साथ डेविड की ये पहली फिल्म थी और जूही चावला इनके ऑपोजिट थी। तारा तड़ना दिल हमारा, ये गाना बहुत

कादर खान भी थे इस फिल्म में। डेविड कादर खान को प्यार से भाईजान बुलाते थे और इस फिल्म के बाद डेविड की 90% फिल्म्स में कादर खान ने काम किया। और डेविड कहते हैं कि मैं भाईजान के बिना कोई फिल्म बनाऊं ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। बोल रहा था बोल में कादर खान साहब का कैरेक्टर बड़ा अजीब था। इनको दिन में तो सब दिखाई देता है लेकिन जैसे ही शाम होने लगती है धुंधला और रात में तो दिखाई नहीं देता। फिल्म में जबरदस्त कॉमेडी होती है जब जब कादर खान आते हैं। लेकिन फिर अगले साल इन्होंने प्रॉपर एक्शन कॉमेडी फिल्म बनाई जिसका नाम था आंखें। लेकिन सिंगापुर इसके बारे में हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, जा रहे हैं तो हमें साथ ले जाइए, हमें तो पॉकेट में रखकर आप ले जा सकते हैं। अपने दिल के पास रखिए और सुनते रहिए रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव। लौटता हूँ इस ब्रेक के बाद।

0: Chester. सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: Vibe.

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आपका स्वागत। समर लेजेंड्स वाला है आपके साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर, और शो लेजेंड्स फिर से, जहां आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर नंबर वन डेविड धवन की। 1993 में डेविड धवन लेकर आए एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म आंखें। ये गाना तो आपने जरूर सुना ही होगा, ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता,
1: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता।
0: बब्बू लहरी का कमाल का म्यूजिक और गोविंदा और चंकी पांडे की जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग के साथ गजब का एक्शन भी था इस फिल्म में।
2: अच्छा, क्या हो गया तुझे?
3: एक मिनट ठहर जरा, यार ये कैसा एक्सीडेंट है? चोट तो कहीं नजर नहीं आ रही है।
4: अंदरूनी चोट लगी है, गाड़ी सीधी भेजा पर चढ़ गई
5: और ये बेचारा पागल हो गया।
4: हम पागल नहीं हुए,
5: देखिए।
0: फिल्म का रिजल्ट क्या हो सकता था भैया, हिट ही होना था। 89 से लेकर 1993 तक डेविड ने 9 फिल्में बनाई, जिनमें 7 तो सुपर हिट हो गई। लेकिन फिर अगले ही साल डेविड ने जो फिल्म बनाई, उसने तो सारा ही रिकॉर्ड तोड़ दिया सक्सेस के। इतनी बड़ी हिट फिल्म रही है कि इस फिल्म के बाद गोविंदा राजा बाबू के नाम से जाने जाने लगे।
6: राजा बाबू चल गया कोई जादू, नौ रहा दिल बेकाबू, क्या कर गई हसीना।
0: जी हाँ, फिल्म थी राजा बाबू, जिसमें शक्ति कपूर कहते हैं, औ नंदू मैं सबका बंधु। फुल ऑन कॉमेडी थी फिल्म। गोविंदा, कादर खान और शक्ति कपूर की जबरदस्त कॉमेडी ने सबको दीवाना कर दिया था। आनंद मिलिंद का बेहतरीन म्यूजिक, हर एक गाना ब्लॉकबस्टर हिट था, और कुछ गाने थोड़े से डबल मीनिंग थे, लेकिन हिट थे साहब, बहुत हिट थे। मुझे लगता है आप सबको ये गाना सुनने का मन कर रहा होगा। अब तो आप एक काम कीजिए, ये गाने सुन लीजिए, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर हम, म्यूजिकल ब्रेक, और इस कहानी को, डेविड धवन की कहानी को मैं जारी रखूंगा इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। रेडियो मस्ती पर आप सुनते रहिए।

0: Aamir Khan wondered.
1: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
0: Salman Khan wanted answers.
2: Kaise kiya ye?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome.
2: You're very good, yaar. Very well done.
0: And Boman Irani?
4: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
5: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
6: How do you know these things? Stop reading my mind.
7: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
8: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
0: कुर्सी मिर्जापुर की हो तो फैसला वोट से नहीं, गोली से होता है। कालीन भैया की हुकूमत,
7: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
0: मुन्ना त्रिपाठी का भौकाल,
9: कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भोपाली के प्रिंस।
0: गुड्डू पंडित का बदला,
10: दिल वाले हैं, दिल फास्ट धड़कना चाहिए।
0: मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल एंड दिव्येंदु, रिलीजिंग 4th September, आइलैंड वाइड एट द सिनेमाज नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव है और मैं हूँ समर। और आज मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो है डायरेक्टर नंबर वन डेविड धवन। तो चलिए डेविड धवन की आगे की हम बात करते हैं। डेविड धवन की हिट फिल्मों की हम बात कर रहे थे तो राजा बाबू की हमने बात की, और इस फिल्म के बाद डेविड ने 3-4 फिल्में और बनाई जो एवरेज रही। लेकिन एक फिल्म का जिक्र मैं यहाँ जरूर करूंगा, एक गाने के लिए करूंगा खासतौर से, क्योंकि इस फिल्म का ये गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ था। सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था ये गाना, और गाना माधुरी दीक्षित पर पिक्चराइज किया गया था। फिल्म थी याराना और गाना था मेरा

इस गाने में माधुरी का स्टेप सिग्नेचर स्टेप बन गया था। कमाल था साहब, कमाल। अच्छा, डेविड धवन खुद ही अपनी फिल्में लिखते हैं, लेकिन शुरू में इनकी ज्यादातर फिल्में डायरेक्टर अनीस बज्मी ने लिखी, जो खुद बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और स्क्रिप्ट राइटर तो कमाल के हैं। ये भी कॉमेडी फिल्में बनाते हैं और कमाल की फिल्में बनाते हैं। वेलकम के दोनों पार्ट और थैंक यू ये हिट फिल्में अनीस बज्मी ने ही बनाई हैं। डेविड धवन कितने बड़े डायरेक्टर हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लोग साल में सिर्फ एक हिट देते हैं, लेकिन डेविड साल में कम से कम दो सुपर हिट देते हैं। ये नंबर ज्यादा भी हुआ है कभी कभी, लेकिन दो तो रहा ही है। यानी आप देखिए 1995 में कुली नंबर वन, राजा बाबू के बाद गोविंदा की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही है। एक बार फिर आनंद मिलन का धमाकेदार म्यूजिक था, सुनेंगे ये था म्यूजिक।

और जैसे कि मैंने कहा था कि कादर खान तो थे ही इसमें भी, लेकिन इस बार फिर राजा बाबू वाली जोड़ी यहाँ पर रिपीट थी, गोविंदा और करिश्मा की। वेल आएंगे आएंगे आपकी गली भी आएंगे, लेकिन फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं। इस ब्रेक में आपकी गली आएंगे हम, आप सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून. हमने उसे कहा इश्क सूफियाना. दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया. 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड सीएससी ऑडिटोरियम टिसेंसन रोड. टिकट $60 ऑनवर्ड्स. कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0. इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया.
2: It's a must-be partner event.

0: सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
1: एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से रेडियो मंची 24/7 लाइव पर। मैं हूं समर आपके साथ और आज मैं बात कर रहा हूं मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर डेविड धवन की। डेविड धवन की ज्यादातर कॉमेडी फिल्में गोविंदा के साथ रही। तो एक्टर गोविंदा के लिए क्या कहते हैं डेविड धवन भाई? इन्होंने 17 फिल्मों में साथ साथ काम किया, उनमें से 13 तो सुपर हिट रही। सुन लेते हैं क्या कहते हैं
2: गोविंदा। यार आउटस्टैंडिंग, आई मीन देयर नो टू वेज अबाउट इट। और मतलब उसने मेरे साथ 17 फिल्में की हैं, वो 17 फिल्म तक मुझे नया लगा है।
1: और जैसा कि मैं कह रहा था कि हर साल कम से कम 2 फिल्में तो सुपर हिट होती थी और कभी कभी ये नंबर ज्यादा भी हो जाता था। तो अगले ही साल यानी 1996 में साजन चले ससुराल, लोफर और मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी आई।

0: और इस फिल्म में अक्षय कुमार पहली बार कॉमेडी करते नजर आए। यानी जो एक्शन हीरो थे उन सबसे डेविड ने कॉमेडी करवाई और इस फिल्म में अक्षय ने गजब की कॉमेडी की। साथ में सतीश कौशिक जो उनके मामा बने, यानी अब तक ये गोविंदा और अक्षय कुमार से कॉमेडी करवा चुके थे, लेकिन फिर 1997 में इन्होंने पहली बार सलमान से भी कॉमेडी करवाई और ये फिल्म भी सुपरहिट रही। फिल्म का नाम था जुड़वा, जिसका पार्ट टू भी आया और ये बनाया डेविड धवन ने अपने बेटे वरुण के साथ।
1: हाँ, दुनिया में आई हो तो लव कर लो, दुनिया में आई हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो।
0: सिंगापुर अभी एक जुड़वा सा ब्रेक ले रहे थे, मतलब बिल्कुल जुड़ा हुआ होगा। इस ब्रेक के तुरंत बाद मैं लौट कर आ जाऊंगा और आपसे बात करूंगा डेविड की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के बारे में। स्टे कनेक्टेड।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: बड़े मियाँ बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म की हम बात करने वाले हैं। डेविड धवन स्पेशल शो चल रहा है रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। मैं हूँ समर आपके साथ। तो इस फिल्म में डेविड के साथ पहली बार मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने काम किया और साथ में छोटे मियाँ गोविंदा थे। यानी अब आप सोचिए कि मनमोहन देसाई की फिल्मों में कॉमेडी करने के बाद पहली बार डेविड धवन की फिल्मों में कॉमेडी किया अमिताभ बच्चन ने, और गोविंदा अमिताभ की जोड़ी कमाल की रही। दोनों का बोला गया एक एक डायलॉग हिट था, और गानों की तो बात ही क्या करें जनाब, बहुत ही कमाल। पहली बार अमिताभ के साथ काम करके कैसा लगा डेविड को, ये आप उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए।
2: बच्चन साहब आउटस्टैंडिंग कॉमेडी, बहुत अच्छा, मतलब कमाल है। अच्छा बच्चन साहब के साथ काम किया, अमित जी का क्या है, वो डायलॉग भी चेंज नहीं करते कुछ भी, बट उनका मीटर जो होता है ना डायलॉग का, यू नो द वे टू से, कहाँ पॉज लेना कहाँ बोलना, वो यूनिक है, एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट।
1: इस फिल्म का म्यूजिक भी आनंद मिलिंद ने दिया था जो बहुत कमाल का रहा। डेविड कहते हैं कि वो अपनी फिल्मों में म्यूजिक और डायलॉग से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, नेवर। सिंगापुर बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है डेविड धवन ने अपने 27 साल के करियर में। 45 फिल्में उन्होंने बनाई हैं और 85% फिल्में हिट नहीं सुपर हिट रही हैं, जो मेरे ख्याल से इतना बड़ा रिकॉर्ड है कि मैं क्या कहूँ, बहुत ही सक्सेसफुल डायरेक्टर्स ऐसा कर पाते हैं। वेल, एक ब्रेक का वक्त है यहाँ पर, और ब्रेक के बाद बात करेंगे डेविड की अपने बेटे की फिल्मों को लेकर, क्या कहते हैं वो।

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 PM onwards, CSE Auditorium, Tessensohn Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now 8138-2790. Ishq Sufiana, Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
1: It's a musty partner event.
2: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. Dusra koi nahi khulega.
3: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
4: कुर्सी मिर्जापुर की हो तो फैसला वोट से नहीं गोली से होता है। कालीन भैया की हुकूमत।
2: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
4: मुन्ना त्रिपाठी का भौकाल।
5: कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भोपाली के प्रिंस।
4: गुड्डू पंडित का बदला।
6: दिल वाले हैं, दिल फास्ट धड़कना चाहिए।
4: मिर्जापुर द मूवी Starring Pankaj Tripathi, Ali Fazal and Divyendu. Releasing 4th September, Island Wide at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो 24/7 लाइव और आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से मेरे यानी समर के साथ। दो पीढ़ी के हीरोज के साथ काम करने के बाद डेविड धवन ने तीसरी पीढ़ी यानी अपने बेटे के साथ भी काम करने का विचार किया। वैसे वो काम करना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रोड्यूसर एकता कपूर ने डेविड धवन को एक फिल्म दिखाई जो साउथ की बनी हुई थी, तो डेविड को ये फिल्म अच्छी लगी और डेविड के बेटे रोहित धवन को भी ये फिल्म बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो खुद भी डायरेक्टर है। लेकिन अब सवाल ये था कि इसमें एक्टर किसे ले, मतलब हीरो किसे बनाए, तो एकता ने कहा इसमें सोचने वाली बात क्या है, आप वरुण को लीजिए। डेविड बोले नहीं नहीं, मैं अभी वरुण को डायरेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन फिर रोहित धवन ने कहा कि यस डैडी आपको वरुण को लेना चाहिए। तो साहब इस तरह से शुरू हो गई वो फिल्म जिसका नाम था मैं तेरा हीरो।

0: लेकिन डेविड कहते हैं कि शूटिंग में बहुत मजा आया, वरुण के साथ काम करके उन्हें बहुत कमाल का एक्सपीरियंस हुआ। ये खुद डेविड की जुबानी सुनिए क्या एक्सपीरियंस हुआ।
1: आई एंजॉयड, वरुण वाज देयर। मैं जब फिल्म शूट कर रहा होता हूँ ना, तो मुझे बेटा नजर नहीं आता, मुझे मेरा एक्टर नजर आता है। और आई ट्राई टू पुश हिम अगेंस्ट द वॉल, एंड समटाइम्स मुझे बोलता भी है, पापा मैम एन न्यू कमर, आई जस्ट, दिस इज माई सेकेंड फिल्म, यू ट्रीट मी लाइक यू एज इफ गोविंदा है सामने या सलमान है। ऐसे बेटा तू एक्टर है, हैव टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू। मैं अगर वो सोचूंगा तो नहीं कर सकता।
0: वेल, डेविड धवन ने बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन उनको लगता है कि सलमान खान जैसी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता, मतलब उनको कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता। आप खुद सुन लीजिए।
2: सलमान एक एक्टर है जिसको, बिकॉज हिज एक्टिंग इज हिज ओनली, हिज डायलॉग डिलीवरी इज हिज, इन रिस्पेक्ट ही हैज हिज ओन सिनेमा यार, यू नो। आप मतलब आप एक स्क्रिप्ट लेके जा रहे हैं, तो वो उसको एक्टिंग उसकी अपनी है, उसका स्टाइल है अपना।
0: तो डेविड की इन बातों के साथ यहाँ एक म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो चला है। इस ब्रेक के बाद आपसे फिर से होगी मुलाकात, और ये होगी आखिरी मुलाकात आज की। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग रेडियो मसी, सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन जैमिंग? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैकस्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। Not your usual sit and watch show. Sing along, clap along, jam along. Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now.
1: It's a musty partner event.
2: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
3: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
2: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
3: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
4: जीजी
3: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
4: G-Mart, your personal grocer.
5: Do you want a partner? Oh, partner. Do you want a partner? Yummy, yummy. Say, want a partner? Oh, partner.

0: वेलकम वेलकम वेलकम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत डायरेक्टर नंबर वन डेविड धवन स्पेशल शो में आपका एक बार फिर से स्वागत। मैं हूँ लेजेंड्स फिर से, मैं समर फिर से। वैसे ही आज की हमारी आखिरी मुलाकात है, लेकिन मुझे लगता है कि डेविड धवन स्पेशल ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने डेविड धवन जितनी फिल्में बनाई हैं और उतनी हिट भी दी हैं। डेविड के बारे में वरुण कहते हैं कि फिल्म मैं तेरा हीरो के सेट पर टेनिस बॉल को उन्होंने दिखाकर मुझे कहा कि इस टेनिस बॉल को अनुपम खेर समझो और अब डायलॉग बोलो। उनकी बात सुनकर सारे असिस्टेंट डायरेक्टर मुझे गौर से देखने लगे और सोचने लगे कि अब ये एक्टिंग कैसे करेगा, देखते हैं। लेकिन जब मैंने सीरियसली पापा से पूछा कि क्या करना है, तो पापा बोले कि एक्टिंग करो, समझो तुम्हारे सामने अनुपम खेर खड़ा है। फिर मैंने वो सारे डायलॉग्स बोल दिए। तो मतलब वो ये समझाना चाहते थे कि अगर तुम टेनिस बॉल को अनुपम खेर समझकर एक्टिंग नहीं कर सकते तो फिर तुम अच्छे एक्टर नहीं बन सकते। दरअसल ये परफेक्शन और ये चीजें डेविड ने डायरेक्टर मनमोहन देसाई से सीखी हैं। देसाई साहब को वो अपना गुरु मानते हैं और क्या कहते हैं उनके बारे में, आइए आपको भी सुना देते हैं।
1: मैंने स्टार्ट की ताकतवर से, जो कॉमेडी जॉनर मनमोहन देसाई का जॉनर था, एक मनमोहन देसाई का अलग जॉनर है जो फुल होलसम फिल्म का जॉनर है, जो मेरा गुरु है बेसिकली, जिसको मैंने फॉलो किया। मतलब वो मेरा गुरु रहा है, रहेगा हमेशा, यू नो, मतलब ही इज द अल्टीमेट फॉर मी वेस्ट सिनेमा इज कंसर्न, बिकॉज ही न्यू एवरीथिंग के ह्यूमन रिलेशनशिप उससे अच्छा कोई कर नहीं सकता। गाने बड़े करना, कॉमेडी करना, सब कुछ करता था, एक्शन भी लेके आता था, मतलब जिसको बोलता वो आपको सिनेमा दिखाता था।
0: लेजेंड्स ऑन लेजेंड, जी हाँ, एक लेजेंड एक दूसरे लेजेंड की तारीफ में अगर ऐसा कह रहा है तो ये एटीट्यूड ही उसे लेजेंड बनाता है। डेविड धवन अनडाउटेडली लेजेंड है। तो आज का ये शो हम यहाँ पर अब समाप्त करेंगे क्योंकि वक्त ने इशारा कर दिया है, लेकिन आपसे एक और शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, एक और लेजेंड की कहानी मैं सुनाऊंगा आपको। आपको आना होगा उसके लिए यहीं, यानी रेडियो मस्ती पर। अभी जाने का वक्त है और जाते जाते आपसे कुछ वादे मैं चाहता हूँ। कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएंगे और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोग आपको याद करें। और याद मुझे भी रखिएगा। मेरा नाम है समर, आपसे मिलता हूँ यहीं पर, मिलूंगा भी यहीं पर। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 September, 7 p.m. onwards, CSE Auditorium, Tessensen Road. What? Tickets $60 onwards. Contact and pay now, 8138-2790. Ishq Sufiana, mera. Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
3: It's a Masti Partner event.
4: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa.

0: Welcome to your chill zone. Musti Music Cafe. Only music, only musti.
1: You show the letter, sir, na? Chal try maarte hain.
2: Stop. Pass.
1: नहीं है.
2: अंदर जाने के लिए पास और ड्रेस कोड दोनों चाहिए.
1: But
2: no, thank you.
1: Please.
3: I told you na, they won't let us in.
1: You always act over smart, Disha. ठीक है ना अभी. चले.
4: Hey. असली पार्टी करनी है. इस पार्टी के लिए चाहिए सिर्फ स्वैग.
1: और म्यूजिक
5: म्यूजिक इधर बजेगा.

कोई मतलब ना किसी से कुछ लेना ए ए I'm one in a million पर ज्यादा भी उछलेना ना किसी से कोई मतलब ना किसी से कुछ

0: अरे गुट में स्वैग है। अरे गुट में स्वैग है। अरे गुट में स्वैग है। अरे गुट में स्वैग है।
1: अभी भी एक घूंट बाकी है।

0: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
1: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
2: कुर्सी मिर्जापुर की हो तो फैसला वोट से नहीं, गोली से होता है। कालीन भैया की हुकूमत।
0: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
2: मुन्ना त्रिपाठी का भौकाल।
3: कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भोपाली के प्रिंस।
2: गुड्डू पंडित का बदला।
4: दिल वाले हैं, दिल फास्ट धड़कना चाहिए।
2: मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल एंड दिव्येंदु। रिलीजिंग 4th सितंबर आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क्स सिंगापुर।
5: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय।
6: नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
7: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back. Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir bhajan jamming? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैकस्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। नॉट योर यूजुअल सिट एंड वॉच शो, सिंग अलोंग, क्लैप अलोंग, जैम अलोंग। Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now.
1: It's a musty partner event.
2: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws. All to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
3: 10 ka 20, 10 ka 20, 10 ka 20.
4: अरे अरे, अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा?
0: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
2: Time to raise the bar. Ramba. Musti Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week, full on Renuka style.
0: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
5: करण अर्जुन आएंगे
0: ना ही आरजेस आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे

0: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए ड्यूटी पर। Non-stop music, non-stop musty. Only on Musty Music Cafe.
1: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it out.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे
2: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रिनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 September, 7 p.m. onwards, CSC Auditorium, Tissenson Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now, 8138-2790. Ishq Sufiana, Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
3: It's a Masti Partner event.

0: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
1: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
2: कुर्सी मिर्जापुर की हो तो फैसला वोट से नहीं, गोली से होता है। कालीन भैया की हुकूमत।
0: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
2: मुन्ना त्रिपाठी का भौकाल।
3: कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भोपाली के प्रिंस।
2: गुड्डू पंडित का बदला।
4: दिल वाले हैं, दिल फास्ट धड़कना चाहिए।
2: मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल एंड दिव्येंदु। रिलीजिंग 4th September, Island Wide at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.

0: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa. Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir bhajan jamming? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैकस्टेज सिब्लिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। नॉट योर यूजुअल सिट एंड वॉच शो, सिंग अलोंग, क्लैप अलोंग, जैम अलोंग। Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now.
1: It's a Masti Partner event.
2: Mere Karan Arjun aayenge.
3: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. Sir, how to serve super hit back-to-back gaane aayenge. Masti Music Cafe.

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है।
1: तुमको लेकर
0: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
2: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
2: रात अकेले है।
3: जोश में रहो।
4: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 September, 7 p.m. onwards, CSE Auditorium, Tissenson Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now, 8138-2790. Ishq Sufiana, mera. Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
3: It's a Masti Partner event.
4: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
5: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
4: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
5: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
6: जीजी
5: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
6: GGMart, your personal grocer.

0: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa. Ganpati bappa! Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir bhajan jamming? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैकस्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। नॉट योर यूजुअल सिट एंड वॉच शो, सिंग अलोंग, क्लैप अलोंग, जैम अलोंग। Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now.
1: It's a Masti Partner event.
2: Hello, namaskar, adab, sat sri akal, game jai Singapore. Saru jai.
3: Shh. No talking allowed. Sirf music bolega. Back to back gaane only on Musti Music Cafe.
4: Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.

0: हनी सिंह।
1: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back. Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir bhajan jamming? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैकस्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। नॉट योर यूजुअल सिट एंड वॉच शो, सिंग अलोंग, क्लैप अलोंग, जैम अलोंग। Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now.
2: The Musty Partner event.
3: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws. All to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
5: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: अच्छा सिंगापुर, एक बात सच सच बताओ, आज कौन कौन फ्राइडे का वेट ज्यादा कर रहा था और कौन कौन जन्माष्टमी का? और जिन लोगों ने दोनों के लिए हाथ उठा ही दिए हैं, आप लोग बिल्कुल मेरी कैटेगरी में आते हो। हेलो हेलो हेलो, इट्स फ्राइडे, मैं हूँ मुग्धा आपके साथ एंड वेलकम आपका मस्ती हैंग आउट। आज जो थोड़ा गोविंदा मूड में है, आपको तो पता है गोविंदा मूड बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है। दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। अब आज का सीन ना थोड़ा एक्स्ट्रा कलरफुल है। एक तरफ ऑफकोर्स फ्राइडे की वाइब है, वो फेमिलियर मूड है, लैपटॉप बंद, कुछ अच्छा खाते हैं, घूमते हैं, एंड एक तरफ है अ लिटल वाइब ऑफ जन्माष्टमी, है ना। देखो सिंगापुर में भी आज ना काफी घरों में पूजा की प्रिपरेशंस होती हैं। कई ऐसे हाउसहोल्ड्स हैं जहां पे रात में जन्माष्टमी की तैयारी होती है, कहीं पे मक्खन मिश्री तैयार हो रही होती है, कहीं पे बच्चे कृष्ण बन के घूम रहे होते हैं। स्कूलों में तो काफी, इंडिया में तो भाई साहब हर बच्चा कृष्ण और हर लड़की राधा बन जाती है। खैर सिंगापुर में भी कई जगहों पर दिखता है, मम्मी पापा जो है लास्ट मिनट क्राउन खरीद रहे, बांसुरी खरीद रहे, दिस एंड दैट, मोर पक, ओ माय गॉड। लिटिल इंडिया साइड का जो फेस्टिव बज है ना, टेम्पल्स का मोमेंट है, फैमिली डिनर्स है, इट्स अ वेरी स्मॉल बट अ वेरी बिग सेलिब्रेशन, दिल से वाला बिग। तो आज का फ्राइडे देखो नॉर्मल तो नहीं है, कृष्णा फ्लेवर भी है, लाइक कृष्ण जी तो है ही मस्ती के एकदम गॉड, मस्ती है, दोस्ती है, शरारत है, इंटेलिजेंस है, और जरूरत पड़े तो सीधे बात भी। मतलब फ्राइडेज परफेक्ट पर्सनालिटी कृष्ण जी की है ना, क्या कॉम्बिनेशन बनाया मैंने। तो आज की मस्ती हैंगआउट में हम जन्माष्टमी को सिर्फ एज अ फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करेंगे, कृष्णा जी के अलग अलग मूड्स के साथ हम उसे एंजॉय करेंगे। थोड़ा गोविंदा वाला फन, थोड़ा कृष्ण कांजी वाली जो नोक जो है वो, थोड़ा सा सेंस, थोड़ा बॉलीवुड, थोड़ा सिंगापुर, फुल मस्ती हैंगआउट ऑन फ्राइडे वाइब वाला मस्ती हैंगआउट 2.2। शुरू करते हैं आज का शो, और आज का जो फिल्मी सेंटर है, द एंकर ऑफ माय शो, स्वयं कृष्ण भगवान तो हैं ही बिकॉज़ आज जन्माष्टमी है, पर एक ऐसी फिल्म जिसमें भी वो स्वयं थे, इंडियन मतलब अवतार में, एंड द मूवीज, ओ माय गॉड,

0: Department CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws. All to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food, and community come together.
1: Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir bhajan jamming? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैकस्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। नॉट योर यूजुअल सिट एंड वॉच शो, सिंग अलोंग, क्लैप अलोंग, जैम अलोंग। Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now.
2: The Masti Partner Event.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय सिंगापुर, फ्राइडे है तो एक सवाल तो बनता है कि अब आप अपने आने वाले वीकेंड्स पे कैसा म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं? वीकेंड पे आप सिर्फ म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक में स्पेशल टेस्ट है, या कोई स्पेशल सॉर्ट ऑफ म्यूजिक है जिसको आप अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं? अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं तो मेरे पास है बैक स्टेज सिबलिंग्स, एंड दे आर द सिबलिंग्स प्राची एंड राघव। सिंगापुर आ रहे हैं वो अपनी मच लव्ड भजन बैठक लेकर के, एंड ये ना थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। यहाँ पे आप ऑडियंस बन के चुपचाप नहीं बैठोगे, नो, आप गाओगे, आप क्लैप करोगे, आप थोड़ा जैमिंग करोगे और पूरी इवनिंग का हिस्सा बनोगे। आप उनके लाइक स्टेज इज द ऑडियंस है उनके हिसाब से, तो वो बिल्कुल सही है। इनका फंडा ही बहुत सिंपल है, मतलब स्टेज और ऑडियंस का वो जो फॉर्मल डिस्टेंस होता है ना वो नहीं मिलेगा आपको। कभी सोलफुल भजन होंगे, कभी सूफी, कभी वो नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स जहाँ पे आपके मम्मी डैडी भी साथ में पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। गिटार है, रिदम है, क्लैप्स हैं, पूरा माहौल एकदम अमेजिंग वाइब बन जाती है वहां पे। ऑनेस्टली मुझे ना 3 generations 1 room 1 vibe का जो फील है बड़ा अच्छा लगा। फ्रेंड्स के साथ जाओ, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, किसी के भी साथ जाओ, अकेले चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? ये एज ग्रुप से ज्यादा सिंगलोंग ग्रुप मैटर करता है यहाँ पे। डेट नोट कर लो, 26th of September शाम 6 बजे एंगेज थिएटर 2 एट संडे। पर टिकट कहाँ से लोगे, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, डोंट मिस इट। टिकट आपको मिलेगा सिस टिक पर, SISTIC। यहाँ पे एक्सक्लूसिवली आपको बैक स्टेज सिबलिंग्स के जो ये इवेंट है उसके टिकट्स मिलेंगे। तो जाइए, इवनिंग बुक करिए, प्राची एंड राघव का ये बैक स्टेज सिबलिंग का परफॉर्मेंस जो है उसको एंजॉय करिए।
0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it out.

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड्स सीएससी ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड। टिकट $60 ऑनवर्ड्स। कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0। इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया।
1: मस्ती पार्टनर इवेंट।
2: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws. All to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: फ्राइडे का मूड जब गो गो गोविंदा वाला होना, तो सेलिब्रेशन का रीजन जो है वो थोड़ा बड़ा होना जरूरी नहीं है, बर्थडे केक काफी है। सिंगापुर इस वीकेंड बर्थडे पार्टी मना रहा है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पैंडा साइज बर्थडे पार्टी। यस, रिवर वंडर्स के काई काई और जिया जिया अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिया जिया 3 सितंबर को 18 की हो गई और काई काई 14 सितंबर को 19 के होने वाले हैं। ओ माय गॉड, और इनका बर्थडे ना, उसका केक कोई रेगुलर केक नहीं है, स्पेशलाइज केक्स और ट्रीट फिल्ड एनरिचमेंट्स के साथ तैयार हो रहा है। अब गो गो गो गोविंदा, इनका कनेक्शन देखो, वहाँ पे मटकी में ट्रीट होती है, मतलब गो गो गोविंदा में, यहाँ पे आइस केक में ट्रीट है। डिफरेंस इतना है कि गोविंदा मटकी फोड़ते हैं, पांडा सीधा खाने पर फोकस करता है, तो वो भी तो खाने पे फोकस करते हैं, वो फोड़ते हैं, ये कूदता है। आई लव पांडास, आई कैन वॉच पांडास फुल डे, मैं पूरा दिन इनके वीडियोस देख सकती हूँ और बोर भी नहीं होंगी, है ना। तो अगर आप ऐसे कुछ प्लान बना रहे हो तो दिस प्लेस इज मेंट फॉर यू। पांडा साइंस, वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस और पांडा देखने के बाद आपको क्या ही चाहिए लाइफ में, कौन सा और फन ढूंढ रहे हो। मुझे प्लान इसलिए क्यूट लग रहा है क्योंकि फ्राइडे जन्माष्टमी फुल सेलिब्रेशन है ना, तो फैमिली के साथ एक पांडा बर्थडे सेलिब्रेट तो कर ही सकते हैं। आई लव दिस प्लान बिकॉज आई लव पांडास, इतना काफी नहीं है। और वैसे भी जब मटकी फूटेगी तो ट्रीट सबको मिलेगी ना, नहीं, चलो कोई बात नहीं। वार्निंग है, बच्चों को आइस केक दिखा दिया ना तो घर आकर मुझे भी पांडा वाला बर्थडे केक चाहिए सोने के लिए तैयार हो जाना। सो बी रेडी विद योर आइस केक्स।
2: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड एनीवेयर एनीटाइम द देसी वे।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
2: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो, या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
3: जीजी।
2: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
3: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: वेलकम बैक, जिन लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया, आप सुन रहे मस्ती हैंग आउट आपके अपनी मुग्धा के साथ। एंड दिस इज सम हाउ फ्राइडे का शो है मस्ती हैंग आउट 2.2। अगर आप ये सोच रहे कि ओ माय गॉड मेरे इतने सारे काम बाकी हैं, साथ में शो छूट जाएगा, हेलो हेलो हेलो, नहीं छूटेगा आपका शो। यू नो मैंने आपसे कहा था कि हमारी जो ऐप है वो अपग्रेड हो रही है और वो इतनी अपग्रेड हो चुकी है कि आप सारे काम एक साथ कर सकते हो, इंक्लूडिंग लिसनिंग टू आवर शोज। बिना सुने भी सुन सकते हो, कैसे? रिकॉर्ड करके। यू नो जैसे आप हमारे ऐप पे जाओगे ना, द अपग्रेडेड वर्जन में आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा। कोई काम नहीं छूटेगा, आपकी मीटिंग्स, आपकी फोन कॉल्स, आपका गाना बजाना, खाना पीना सब कुछ होगा सनम, और साथ में शो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। जस्ट स्विच ऑन द रिकॉर्डिंग बटन हमारे मस्ती मीडिया ऐप पे जा करके, एंड अपने फेवरेट शोज को आप रिकॉर्ड करो और जब मर्जी पड़े उसको सुनो, एंजॉय करो। और अगर आपको लगता है कि यू हैव बीन इनफ ऑफ इट, टेकन इनफ ऑफ इट, लिसन इनफ ऑफ इट, उसको डिलीट कर दो, समझे? मैं तभी तो कह रही थी हमारा अपग्रेडेड वर्जन ऐसा वैसा नहीं है। खैर एक वर्जन और बहुत अमेजिंग है, जन्माष्टमी है तो आता वक्त जो है वो हमें कहां ले जा रहा है, गणपति बप्पा मोरया, उसकी प्लानिंग के लिए। उनको घर लाने की प्लानिंग हो रही है ना, चल रही है, राइट। कहां जाएंगे हम? 21 कफ रोड। जी ज्योति गणपति, आप जो है इस पर जा सकते हैं 21 कफ रोड पे। 30 सिंगापुर डॉलर्स से शुरुआत होगी यहाँ पे गणपति आइडल्स की, जिनकी जो हाइट है ना, दैट विल बी 6 इंचेस से लेके 42 इंचेस तक। अलग अलग लुक, ब्यूटीफुल वर्कमैनशिप, बहुत सारी वैरायटीज हैं। फोटो देखकर डिसाइड मत करो, जस्टिस नहीं हो सकता, विजिट करो एंड देन बिलीव करो। एक और एक्स्ट्रा रीजन है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, जस्ट एज ब्यूटीफुल एज ए ब्यूटीफुल मोती। जी अगर आपने कोई आइडल खरीदा है और उसको खरीदने के बाद आपने रिसीप्ट को संभाल के रखा है, जस्ट लाइक माय पेरेंट्स, उनसे कोई 10 साल पुरानी भी कोई रिसीप्ट मांगे तो दे देंगे लकी ड्रॉ जीतने जैसे, उस रिसीप्ट को 9151 8963 यानी हमारे नंबर पर शेयर करो। और आपके पास मौका है एक ब्यूटीफुल पर्ल नेकलेस जीतने का, मतलब शॉपिंग की शॉपिंग, इनाम का इनाम। चांस पे चांस मारे ले। लोकेशन याद रखना 21 कफ रोड, ये ज्यादा दूर नहीं है, कैंपबेल लेन से जस्ट 5 मिनट्स, है ना? गणपति आइडल्स के लिए स्पेसिफिकली यही जगह है।

0: पर्ल नेकलेस जीतिए, गणपति जी घर लाइए और फेस्टिवल्स गो मजेदार बनाइए।
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
1: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
2: कुर्सी मिर्जापुर की हो तो फैसला वोट से नहीं, गोली से होता है। कालीन भैया की हुकूमत।
0: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
2: मुन्ना त्रिपाठी का भौकाल।
3: कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भोपाली के प्रिंस।
2: गुड्डू पंडित का बदला।
4: दिल वाले हैं, दिल फास्ट धड़कना चाहिए।
2: मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल एंड दिव्येंदु। रिलीजिंग 4th सितंबर, आइन एंड वाइट एट द सिनेमाज नियर यू। ब्रॉट यू बाय विजन डिस्क्स सिंगापुर। Aamir Khan wondered.
5: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
2: Salman Khan wanted answers.
6: कैसे किया ये?
2: R. Madhavan said.
7: Awesome.
8: You're very good, yaar. Very well done.
2: And Boman Irani?
9: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
2: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
10: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
2: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonderful Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
11: How do you know these things? Stop reading my mind!

0: गोकुल में जो करे निवास, गोपियों संग जो रचाए रास, देव की यशोदा है जिनकी मैया, ऐसे है हमारे कृष्ण कन्हैया। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं मुग्धा को, दिस इज मस्ती हैंगआउट 2.0। अगर आपको लगता है कि आपने शो को कहीं से भी मिस किया है, सो हमारी नई अपग्रेड ऐप जो है दैट विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। व्हाई? बिकॉज हमारी नई ऐप में ना एक नया वर्जन है, और इस वर्जन से आप अपने सारे जो फेवरेट शोज हैं उनको रिकॉर्ड करके रख सकते हैं अपनी लाइब्रेरी में, रिकॉर्डिंग लाइब्रेरी में, और आप जब चाहें उन शोज को जाके सुन सकते हैं। तो आप कुछ मिस नहीं करेंगे, ना शोज ना काम। पर फिलहाल एक और चीज है जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। सिंगापुर फ्राइडे का जो ये आर होता है ना, इट्स वेरी चटपटा, भौकाल टाइप्स होता है। तो चलिए भौकाली बात कर लेते हैं। ये जो आज का शो है दैट इज ऑल अबाउट मस्ती फ्राइडे, OMG सॉर्ट ऑफ वाइब है ना। बार बार जो है हम एक ही बात कर रहे हैं, सामने जो दिख रहा है उसके पीछे का सीन जो है उसके बारे में बात ही नहीं हो रही है। मिर्जापुर के केस में सीन ये है कि अभी थिएटर्स तक पहुंच रही है, पर उसके पहले बात करते हैं उसके एडवांस बुकिंग की। मिर्जापुर द मूवी की एडवांस बुकिंग की बात करें तो 1,34,000 मतलब कि 1,34,000 से ज्यादा टिकट्स बिक चुके हैं। ब्लॉक सीट्स के साथ एडवांस कलेक्शन ऑलरेडी 6 करोड़ क्रॉस कर चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि जो मेकर्स है वो कितने खुश हो गए। वोगाइल डाइड यूजर ब्राइट राइट। गुड्डू पंडित की बात करें, मुन्ना भैया की बात करें, कालिन भैया की बात करें, इनको देखने के लिए फैंस आर सुपर एक्साइटेड। पहले से प्लान लॉक हो चुका है। इसी को कहते हैं प्लानिंग, जो कि अक्सर हम फ्राइडे नहीं करते हैं फ्राइडे को लेकर के। तो सिंगापुर वालों, अगर आप भी अभी सिर्फ क्लिप्स और रील्स और टीजर्स एंड ट्रेलर्स बैठ के पड़े हैं तो मत करो ये। विजन डिस्क सिंगापुर ब्रिंग्स मिर्जापुर द मूवी टू सिंगापुर सिनेमाज, रिलीजिंग ऑन 4th of September। मतलब गो गो गो गोविंदा आ चुके हैं थिएटर्स में, आपको पता ही नहीं था। दो कर लो बात। विजन डिस्क सिंगापुर जो आपके लिए लेकर के आए हैं आपके नियरेस्ट सिनेमा हॉल में मिर्जापुर। तो अब इसके बाद भी अगर आप कहेंगे कि भैया मिर्जापुर नहीं देखे तो देखिए हमारे कालीन भैया को बहुत बुरा लग जाएगा। और जब कालीन भैया को बुरा लगता है ना तो कालीन भैया क्या करते हैं, वो खुद कुछ नहीं करते हैं, सब करवाते हैं। तो इससे पहले कि बाकी लोग अपने टिकट्स बुक कर लें और बाकी का भौकाल बने, फ्राइडे मूवी गैंग को मैसेज कर दीजिए प्लान मिर्जापुर थिएटर

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन जैमिंग? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैक स्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैक स्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। Not your usual sit and watch show. Sing along, clap along, jam along. Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now.
1: It's a Masti Partner event.
2: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws. All to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-25418. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: वेलकम बैक। पता है फेस्टिव सीजन का एक साइड इफेक्ट क्या होता है? घर में स्नैक बॉक्सेस सडनली सीरियस बिजनेस हो जाते हैं। जी कोई गेस्ट के लिए ला रहा है, कोई गिफ्टिंग के लिए ला रहा है, और कोई कह रहा है कि ये तो बस ऐसे हेल्थ अपने खुद के खाने के लिए मंचिंग मंचिंग। और एग्जैक्टली आधे ज्यादा डब्बे तो खुद ही फिनिश हो जाते हैं। तो अगर आप भी मिड ऑटम सीजन में कुछ प्रीमियम नेचुरल और गिफ्ट वरी ऑप्शंस देख रहे हैं तो जीजी मार्ट का नया मिड ऑटम सेल आ गया है एंड दिस इज एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू। 11 से 25 सितंबर 2026 विजिट करिए जीजी मार्ट कियोस्क नंबर 12 वेलोसिटी नोवेना। यहाँ पे आपको मिलेंगे क्रशेबल नट्स, फ्लेवर्ड और क्लासिक ड्राई फ्रूट्स की बहुत ही प्रीमियम रेंज विद नेचुरल केमिकल फ्री हलाल सर्टिफाइड ऑप्शंस भी है। यहाँ पे कैशियस द आलमंड्स असॉर्टेड नट्स प्रीमियम गिफ्ट पैक है, तो मतलब गिफ्ट पैक्स को आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। गिफ्टिंग ऑप्शन बहुत अच्छा है और जो लोग हेल्दी पैंट्री ऑप्शन ढूंढ रहे हैं प्रेफर करते हैं उनके लिए तो ये रेंज सोने पर सुहागा। इट्स लाइक हेवन ऑन द अर्थ। होलसम क्रंच, प्रीमियम पैकेजिंग, फेस्टिव सेविंग, सब एक साथ, क्योंकि ये है ही ऑटम सेल ना, मिड ऑटम सेल, तो देर किस बात की। मुझे ऐसे ऑफर्स का पता एक प्रॉब्लम क्या लगता है, गिफ्टिंग के नाम पे खरीदो और फिर बॉक्स देख के खाने का मन करने लग जाता है, तो जिस तरह जो पहुंचना होता है वो पहुंच नहीं पाता है, मेरे टेबल पे पैकेट खाली हो जाता है और मैं तो हुई बहुत कमजोर पेट, आई मीन कमजोर दिल वाली पेट के मामले में। तो याद रखिए जब जा रहे हैं तो दो ले आना, एक मेरे लिए भी लाना। जीजी मार्ट मिड ऑटम सेल 11 से 25 सितंबर कियोस्क 12 वेलोसिटी नोवेना। आपका पर्सनल ग्रोसर है तो इसको मिस मत करना।
2: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere anytime.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: अगर आपने अभी अभी मस्ती हैंगआउट ज्वाइन किया है तो लेट मी टेल यू जस्ट वन थिंग, आज फ्राइडे फीवर चल रहा है। सेकेंड आवर में हम वैसे भी शुरुआत OMG से कर चुके हैं। OMG वो मूवी जहां जिसको देखने के बाद हमें काफी सारी चीजों पे विश्वास करने का मन किया और काफी सारी चीजें जो थी हमारी लिस्ट से आउट आउट आउट आउट आउट हो गई। लेकिन फिलहाल चूंकि बॉलीवुड आर्मी है और OMG इज वेरी बॉलीवुड, जन्माष्टमी है, कृष्ण जी के वर्जन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। OMG में अक्षय कुमार ने क्या प्ले किया था, द काम द क्लेवर, जो कांजी जो है ज्यादा उलझता रहता है ना उसको पूरा सॉर्ट कर दिया, एकदम मक्खन जैसा हो गया कांजी, उसका पूरा क्लटर्ड दिमाग क्लियर हो गया। अक्षय ने हमें बता दिया कि जरूरी नहीं है जो ना दिखे वो सच ना हो और जरूरी नहीं है जो दिखे वो सच हो, है ना। ना तो फनी पार्ट, अक्षय कुमार अब भगवान से सीधा एलियन बनने वाले हैं। राइट उनकी एक अपकमिंग फिल्म है साइफाई एक्शन थ्रिलर सामुक, उसकी शूटिंग ना यूके में चल रही है। एंड अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो बंगाली एक्ट्रेस रुक्मिणी माइत्रा उनके ऑपोजिट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल के लिए बात चल रही है उनसे कास्टिंग के लिए। फिल्म को कनिष्क वर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं एंड द फ्लेवर ऑफ कोर्स एलियन बन रहा है, तो साइफाई है, एक्शन है, सर्वाइवल, एलियन माइथोलॉजी, इन सबका मिक्स बताया जा रहा है। देखो अक्षय कुमार ना आलू है बॉलीवुड का, ऑल्दो ही डजंट लुक लाइक आलू बट ही बिहेव्स लाइक आलू। आप उनको किसी भी रोल में डाल दो ही लुक्स परफेक्ट। गैंगस्टर बना दो, बुरा गैंगस्टर, अच्छा गैंगस्टर, विलेन, कॉप, एनीबॉडी, ही इज लाइक आलू, वो किसी भी चीज से मिक्स हो जाते हैं। सो आई तो कॉल हिम आलू, बट वो आलू जो दिखता नहीं है आलू पर है आलू, है ना। आप रेंज देखो, कृष्ण बने, इंसान को कॉमन सेंस सिखाई, अब एलियन बन के सर्वाइवल सिखाएंगे, कभी कॉप बन के जीना सिखाते हैं, कभी राक्षस बन के मारना सिखाते हैं, कभी बाबा बन के भूत भगा देते हैं। ओ माई गॉड, मुझे ट्रांजिशन बहुत फन लगता है।

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड्स सीएससी ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड। टिकट $60 ऑनवर्ड्स। कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0। इश्क सूफियाना, इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया।
1: It's a musty partner event.
2: This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa.

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय सिंगापुर, अब आज तो नहीं लेकिन आने वाले हफ्तों में ऐसा काफी कुछ है जो आपके मूड को स्विच कर सकता है। पूरे वीक का नॉइज एक तरफ और वीकेंड के लिए कुछ ऐसा जो दिल को एंगेज करे और शाम को थोड़ा स्पेशल बना दे वो एक तरफ। परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रेजेंस इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया। नाम से आपको फील आ गया होगा, सूफी फ्लेवर्स, सोलफुल वॉइस, लाइव म्यूजिक और वो काइंड ऑफ इवनिंग जहां पे मेलोडी सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं चलती, पूरा मूड बना देती है। नोट द डेट, सैटरडे 26 सितंबर 2026, 7 से लेकर 9 बजे तक। एंड द वेन्यू इज ऑडिटोरियम सिविल सर्विस क्लब, टेसनसन 60 टेसनसन रोड, सिंगापुर। आप समझ रहे हैं ना, अब टिकट्स जो है दे आर ऑफ $60 and $80 और बुकिंग के लिए आप पे नाउ कर सकते हैं। जी पे नाउ, नंबर बता देती हूँ नोट करो, 8138-2790 पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम जो है ना मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर द डिजिटल मीडिया पार्टनर, तो मैं जितनी बार आपको ये बात बताऊंगी ना आपको पता होना चाहिए कि हम मस्ती मीडिया नेटवर्क के नाम से आपको कहाँ मिलेंगे, ऐप पर। नया नाम है हमारा ऐप का, समझ रहे ना, द अपग्रेडेड वर्जन, प्ले स्टोर आई स्टोर दोनों पे मिलेंगे। जी तो इवनिंग प्लान करो, इश्क सुफियाना बाय अमित धमेलिया, प्रेजेंटेड बाय परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स। दिस इज मी मुग्धा, स्टे ट्यून्ड।
2: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style, anywhere, anytime.

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन जैमिंग? जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैक स्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैक स्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। Not your usual sit and watch show. Sing along, clap along, jam along. Bhajan jamming with backstage siblings. Tickets on Sistic. Book now.
1: It's a musty partner event.
2: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. Dusra koi nahi khulega.
3: Nahi khula to tod denge.
0: Kursi Mirzapur ki ho to faisla vote se nahi. गोली से होता है। कालीन भैया की हुकूमत।
2: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
0: मुन्ना त्रिपाठी का भौकाल।
4: कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भोपाली के प्रिंस।
0: गुड्डू पंडित का बदला।
5: दिल वाले हैं, दिल फास्ट धड़कना चाहिए।
0: मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल एंड दिव्येंदु। रिलीजिंग 4th September, Island Wide at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.

0: राधा की भक्ति मुरली की मिठास, माखन का स्वाद और गोपियों का रास, इन्हीं सबसे मिलके बनता है जन्माष्टमी का ये दिन खास। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
2: हाय सिंगापुर, फ्राइडे नाइट है, जन्माष्टमी का मूड है। और एक बात तो कृष्ण जी ने हमें काफी रिपीटेडली सिखाई है कि हर चीज जो आंखों से समझ नहीं आती, कभी कभी दिमाग और इंट्यूशन दोनों का इस्तेमाल कर लो। और जरूरी नहीं है कि जो दिखे वो सच हो और जो ना दिखे वो झूठ हो। सो ओएमजी में कृष्णा का जो स्टाइल है, अगर आपने देखा हो, कांजी को आंसर्स जो है वो स्पून फीड नहीं करता, कंफ्यूज होने देता है, सोचने देता है, खुद ही वो एक्सप्लोर करता है कांजी अपने सवालों के जवाब, वो अपने सच तक खुद पहुंचता है। अब ऐसा ही कुछ है माइंड को चैलेंज करने वाली बात इस जोन में सिंगापुर को लेकर आने वाली है हमारी प्यारी सुहानी शाह विद द शो स्पेल बाउंड, अ मेंटलिज्म एक्सपीरियंस। वंडरफुल एस्केपेड्स और एपिक एनकाउंटर्स प्रेजेंट कर रहे हैं दिस स्पेशल शो संडे 20 सितंबर 2026 शाम 6 बजे एट क्रेटा आयर्स पीपल थिएटर, 38 क्रेटा आयर रोड। शो इंग्लिश में होने वाला है होस्ट, तो इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट फॉर यू। तो आपकी जो शाम है दैट्स गोना बी माइंड रीडिंग, मेंटलिज्म एंड इम्पॉसिबल थी लगने वाली बातें जो आपके सामने सच होती आपको खुद दिखाई देंगी। लेकिन इतनी आसानी से कोई भी ऐसी चीज को हम कैसे जाने दे सकते? सो देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो मुझे बताइए कि सुहानी शाह जो शो लेकर के आ रही है सिंगापुर में उसका नाम क्या है। आई नो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, पर दिमाग को थोड़ा काम पे लगाइए एंड टेल मी। मैं ऑप्शन भी दे रही हूँ आपको इस मुश्किल सवाल के, दो मुश्किल ऑप्शंस हैं, इनमें से एक सही है। ऑप्शन ए है सुपर बाउंड या ऑप्शन बी है स्पेल बाउंड। 9151896 पर दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और बताइए क्या है सही जवाब, सुपर बाउंड या स्पेल बाउंड। और अगर आप लकी हुए तो आप लाइव शो देख सकते हैं। टिकट्स खरीदने के लिए आपको सिस टिक पर जाना होगा। तो जन्माष्टमी पे कृष्ण जी के ट्रिक्स और विजडम याद रखिए एंड 20 सितंबर को जाकर के ये शो एंजॉय करिए, समझे?
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: Presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food, and community come together.
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत, और किसी ने सुकून. हमने उसे कहा इश्क सूफियाना. दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया. 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड सीएससी ऑडिटोरियम टिसेंसन रोड. टिकट $60 ऑनवर्ड्स. कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0. इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया.
2: It's a must-be partner event.

चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे

आंखों से हटाया चश्मा, आंखें तो मिलाओ जी। दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी। अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी। उनके फ्यूचर सन इन लॉ की

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: सिंगापुर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं, बस आखिरी आर में है, पर फिर भी बातें काफी सारी बाकी हैं। फ्राइडे के इस पॉइंट पे एक चीज अलाउड है, थोड़ी शरारत। आज देखो जन्माष्टमी वाइब है, शरारत का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा हाई होता है। कृष्ण जी के वक्त में क्या होता था, मक्खन छुपा देती थी उनकी मम्मी और बाकी के गांव की औरतें, बिकॉज कृष्ण जी को मक्खन बहुत पसंद था और उनकी सीसीटीवी जैसी नजर, ऑफकोर्स वो कृष्ण भगवान थे, सब पता लगा लेते थे मक्खन कहाँ है क्या है। आज के वक्त में लोग खुद को सीसीटीवी से छुपाने वाली शर्ट्स पहन रहे हैं। सोचो अब आप, जर्मनी के डिजाइनर हैं सिमोन ने एक कलरफुल डिजिटल कैमोफ्लॉज शर्ट डिजाइन की है, जिसका पैटर्न एआई पावर्ड कैमरास को कंफ्यूज कर देता है। मतलब कैमरा नॉर्मली क्या इंसान को आइडेंटिफाई करके पर्सन लेबल करता है, लेकिन ये शर्ट सामने आती है जब तो सिस्टम को समझ में नहीं आता कि वह इंसान कहाँ है। दैट इज इनसेन। एंड मजेदार बात यह है कि शर्ट का पैटर्न बनाने में एआई की मदद ली गई है। मतलब एआई से एआई को कंफ्यूज कर रहे हैं। दैट इज सुपर इनसेन। इसीलिए तो मैं एआई पर रिलाई नहीं करती, एआई खुद को ही कंफ्यूज कर रहा है। बताओ जरा, कोई गारंटीड इनविजिबिलिटी क्लॉक नहीं है ये, मतलब बट एक्सपेरिमेंट का जो पॉइंट है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। टेक्नोलॉजी स्मार्ट हो रही है भाई। अब ये कैमोफ्लॉज जो है वो हर एक कैमरा को नहीं डिच कर सकता, मतलब ये माखन चोर कहीं ना कहीं तो पकड़ा जाएगा, पर फिलहाल कुछ वक्त के लिए कहीं कहीं पे आप इनविजिबल हो सकते हैं हैरी पॉटर की तरह। जी मुझे तो ये फुल कृष्णा स्टाइल क्लेवरनेस लगती है। सीधा कोई मुकाबला नहीं है, थोड़ा दिमाग है, थोड़ा मिस्टिफ है। एंड फ्राइडे और आज का जन्माष्टमी फीवर तो हमें यही कहता है, पर्सन नॉट फाउंड मोड अपना ऑन कर लो और ये शर्ट पहन लो।

0: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
1: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
2: कुर्सी मिर्जापुर की हो तो फैसला वोट से नहीं, गोली से होता है। कालीन भैया की हुकूमत।
0: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
2: मुन्ना त्रिपाठी का भौकाल।
3: कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भोपाली के प्रिंस।
2: गुड्डू पंडित का बदला।
4: दिल वाले हैं, दिल फास्ट धड़कना चाहिए।
2: मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल एंड दिव्येंदु। रिलीजिंग 4th September, island wide at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.

0: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
1: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
2: कुर्सी मिर्जापुर की हो तो फैसला वोट से नहीं, गोली से होता है। कालीन भैया की हुकूमत।
0: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
2: मुन्ना त्रिपाठी का भौकाल।
3: कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर, हम हुए भोपाली के प्रिंस।
2: गुड्डू पंडित का बदला।
4: दिल वाले हैं, दिल फास्ट धड़कना चाहिए।
2: मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल एंड दिव्येंदु। रिलीजिंग 4th सितंबर, आइन एंड वाइट एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर। This Ganesh Chaturthi, bring home a bappa you simply can't take your eyes off. Vibrant colors, gorgeous ornaments, beautiful poses, mesmerizing detailing, eco-friendly and more. Har Ganpati idol apne aap mein khas. Welcome bappa for Ganesh Chaturthi or choose one to be a beautiful part of your home forever. See the magnificent collection at Jyoti Stores Ganpati Showroom, 21 Cuff Road. Come for the variety, leave with your bappa.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: जन्माष्टमी फ्राइडे है तो कृष्ण जी का एक और फेवरेट फ्लेवर याद आ रहा है मुझे, मेला, लोग, खाना पीना, कलरफुल डांस, फेस्टिविटीज। कृष्ण जी को बहुत पसंद है और जन्माष्टमी भी है, वो तो आज है, खैर अब तो खत्म होने वाली है। ऑनेस्टली OMG का एक बहुत सिंपल सा पॉइंट है, फेथ हो, फेस्टिवल हो, सेलिब्रेशन हो, जब लोग जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, मजा तभी आता है ना, और तभी आपका ट्रस्ट बनता है। तो एक डेट आप नोट करिए, 27 सितंबर, 27th of September, माउंट बैटन CCIAEC प्रेजेंस, फेस्टिव बाजार 2026, रविवार 27 सितंबर सुबह 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक एट माउंट बैटन CC मल्टीपर्पज हॉल। अब यहाँ पे शॉपिंग भी होगी, फूड भी है, रेजिडेंट्स के लिए लाइव परफॉर्मेंसेस भी हैं, बच्चों के लिए बाउंसी कैसल है, जॉय राइड्स, लकी ड्रॉ प्राइजेस, मतलब प्रॉपर फैमिली डे आउट है ये। आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप स्मॉल बिजनेस ओनर है ना या होम बेस्ड बिजनेस चलाते हैं तो अपने प्रोडक्ट्स आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे स्टॉल्स भी लगाने का मौका मिलेगा जिनकी कॉस्टिंग आप नोट कर लो। स्टैंडर्ड टेबल का कॉस्ट है $80 एंड प्रीमियम का है $100, GST एडिशनल है। और आप स्टॉल की इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकते हैं, नंबर नोट करिए 8330-2518। तो इस फ्राइडे को सिर्फ वीकेंड का प्लान मत बनाओ, सितंबर का पूरा फेस्टिव प्लान बनाओ, क्योंकि मैं तो वही कैलेंडर मोड ऑन करके बैठी हूँ। कृष्णा जी के सेलिब्रेशन मोड में एक ही रूल होता है भैया, खुद भी एंजॉय करो, दूसरों को भी साथ में लेके चलो, परेशान किसी को मत करो वरना कृष्णा जी परेशान कर देंगे।
2: ऊंची वाली हील पहन कर डांस बसंती, डांस बसंती, डांस बसंती।
1: वैसे भी कहते हैं डोंट डिस्टर्ब द डिस्टर्बेंस अंटिल इट कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू। वाह, समझे नहीं, कोई बात।
3: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: रिमिक्स बसंती।
1: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन जैमिंग। जिस भजन जैमिंग मूवमेंट ने हजारों को एक साथ गाने पे मजबूर कर दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैक स्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, और जब पूरा हॉल एक साथ गाएगा वो बनेगा द रियल बैक स्टेज सिबलिंग्स एक्सपीरियंस। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। Not your usual sit and watch show. Sing along, clap along, jam along. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now.
2: It's a Masti Partner event.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ
1: और सिंगापुर। बस आज का मस्ती हैंगआउट जन्माष्टमी फ्राइडे स्पेशल यहीं पे रैप अप करते हैं। मूड काफी रंग बिरंगा सा था। गो गो गोविंदा की मस्ती थी, ओएमजी में कृष्णा कांजी की नोक झोंक, दैट विट और कॉमन सेंस एंड थोड़ा भौकाल डाइड फ्यूचर ब्राइड भी था, है ना। देखो जन्माष्टमी का फ्लेवर वैसे भी हमने आज के शो में रखा ही, मतलब कई सारी बातें थी जो आज के हमने शो में इंक्लूड कर लिया। आपका पूरा सितंबर का मैंने कैलेंडर सेट कर दिया, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत है नहीं। सिंगापुर में जो लोग अभी भी फैमिली के साथ डिनर पे जा रहे हैं, टेम्पल्स जाने का प्लान कर रहे हैं, घर पे पूजा कर रहे हैं, फ्राइडे नाइट को इजीली लेना। बस इतना ध्यान रखना आज के बाद दो दिन आपको ऑफिस का कोई काम नहीं करना है, मजे करो, आउटिंग्स पे जाओ, घूमो फिरो, चिल करो, जो भी करना अपने लिए करो, है ना। यू आर नॉट बाउंड टू पिक अप योर फोन्स अगर आपके ऑफिस की छुट्टी है तो। अदरवाइज वैसे तो सैटरडे इज ऑल ऑफ इन सिंगापुर, है ना। मैं एक ही बात कहूंगी, वीक खत्म, फ्राइडे मिला है, बहुत सारी मस्ती करने का मौका मिला है। ओवर थिंकिंग को छुट्टी दे दो और छुट्टी को एंजॉय करो। हमारी तरफ से एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, अ वेरी लवली फ्राइडे, अ वेरी फैंटास्टिक वीकेंड, एंजॉय करिए। टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगले शो में ऑन मंडे।

0: इस वीकेंड वाज अ गाय.
1: वो आ गया, देखो वो आ गया.
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल. इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग.
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा.
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh May.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट से बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया अकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Weekend ka maza with the best of Bollywood playing only on

0: कुछ पुरानी धुने, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते, हंसाते, उदासी भरे, खिलखिलाते किस्से। समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।
2: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते हैं तो तेरे लिए लिखते।

किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय?
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल? इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग?
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप?
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Mercy 24/7 Live. Have a musty bhara weekend.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan. Raat akeli hai, chain se
1: aankhein. Raat akeli hai to kya, hum to aankhein.

0: साथ अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
2: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लू, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊँ, हूँ खुद से जुदा।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

0: बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।
1: Once upon a time in La La Land, सुनो सुनो हम थे 30 मरहान।

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है?
1: तुमको लेकर
0: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
2: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बन के रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
2: रात अकेले जोश में रहो।
0: The perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेडियो मस्ती 24/7 विशेस ऑल द टीचर्स वर्ल्ड वाइड अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे।
1: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
2: वो आ गया, देखो वो आ गया।
1: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, Weekend was a filmy dialogue.
3: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
1: And if Weekend was an app,
4: Radio Masti 24/7 live.
5: Radio Masti 24/7 live.
6: Radio Masti 24/7 live.
7: Radio Masti 24/7 live.
1: How to make best of weekends that travel faster than light? Tune into our Masti Weekends on Radio Masti 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh Mayer.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: मेरा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.